सुप्रभात, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांगन में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते

0: हुए। श्री मोदी ने कहा कि सांगड़ संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकाइना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है ज्ञान ज्योति। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि और अधिक मजबूत बनाने आती हैं। इसीलिए सदैव अच्छे कर्म करें, सत्य का साथ दें और मानवता की सेवा करें, यही सच्ची भक्ति है। मेहनत

अभी है जो भाग्य के बंद दरवाजों को भी खोल देती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, निरंतर प्रयास ही सफलता का मार्ग बनाता है। ज्ञान ज्योति। श्रोताओ, अबली जी प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आइए प्रभु वंदन करें, प्रभु चिंतन करें और दिन की शुरुआत करें ईश्वर वंदन से। अपने घर, परिवार और समस्त समाज कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करें।

जी बिल्कुल, इसी मनोकामना के साथ आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भक्ति वो शक्ति है जो मन को शांति देती है, आत्मा को संतोष और जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। आइए कुछ क्षणों के लिए सांसारिक व्यस्तताओं से दूर होकर ईश्वर की भक्ति और आराधना में स्वयं को समर्पित करें।

जीवन की सबसे कठिन राहें अक्सर सबसे सुंदर सवेरा लेकर के आती हैं। इसीलिए संकट देखकर अपने मन को कमजोर मत कीजिए। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य, धैर्य और अच्छे कर्म का साथ नहीं छोड़ता, उसके भाग्य का द्वार प्रभु स्वयं खोलते हैं।

प्रेम है, जो प्रेम दया सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है वही वास्तव में ईश्वर के निकट पहुंचता है, क्योंकि वही सर्वोच्च सत्ता समस्त सृष्टि का नियंता और पालन करता है।

बिल्कुल इसी तरह से प्रभु का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हमारे जीवन को सुख, शांति एवं सद्भाव से प्रभु भर दें।

सुन रहे हैं वंदना आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से आपके अपने फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुने श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

शिवजी की बारात में जाने के लिए देवताओं तथा दिग्पालों के समूह एकत्रित हुए। भगवान विष्णु ने विनोद में उन्हें शिवजी की वेशभूषा के प्रतिकूल बता दिया। इस पर शिवजी ने दूत भृंगी को भेजकर अपने गण बुलवाए। फिर तो ऐसी बारात सजी जिसे हिमवान की नगरी के बालक देखते ही जैसे जान बचाकर भाग चले। कैसे थे शिवजी के गण? कोई दुबला, कोई बहुत मोटा, कुछ भयंकर गहने पहने, तो किसी के हाथ में नरमुंड और पूरा शरीर ताजे रक्त में सना हुआ, कुछ के मुख गधे, कुत्ते तथा सुअर जैसे। ये सभी अनगिनत योगिनियों, प्रेत और पिशाचों के साथ चल रहे थे। जैसा दूल्हा वैसी बारात। इधर हिमवान ने अद्भुत ढंग से अपनी नगरी को सजाया था। मंडप ऐसा सुंदर जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। विवाह के अवसर पर जगत के सारे छोटे बड़े पर्वतों, वन, समुद्र और नदियों को न्योता भेजा गया था। ये सब अपने इच्छा अनुसार सुंदर शरीर धारण कर उपस्थित हुए। बारात नगर के निकट आई तो नगर निवासी बन संवर कर नाना प्रकार के वाहन लेकर उसकी अगवानी करने चले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM 101.8 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की।

अब से बस थोड़ी ही देर में यानी 6:55 पर संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:00

5 मिनट पर समय रहेगा हमारे दैनिक कार्यक्रम का। कार्यक्रम रहेगा सुप्रभात हमीरपुर लोक संसार। ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 7:35 पर, 8 बजे समाचार प्रभात का अंक और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। हिमाचल डायरी का आज का अंक सुनिए 8:30 पर। 8:35 से हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा सुबह के 10 बजे तक। इन कार्यक्रमों के दौरान 9:20 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 9:28 से आप सुनेंगे कार्यक्रम लाइव फोन इन, श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित हेलो हमीरपुर। हिंदी समाचार बुलेटिन सुबह 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। लघु वार्ता सुनिएगा 10:05 पर, प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा से कौशल उन्नयन। देशभक्ति के फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे 10:15 पर। लोक रंग ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 10:45 पर। प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा 11 बजे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से हम रिले करेंगे। और 11:05 से दोपहर 12 बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। आज है रविवार और आज के दिन आप सुनते हैं बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंडल। 12:30 पर रोजाना प्रसारित किया जाता है कार्यक्रम सैनिकों के लिए। और दिन के 1 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। इन कार्यक्रमों के दौरान मिड डे न्यूज 2 बजे और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से, माफ कीजिए दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 3 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से आप सुनेंगे। और 5 बजे हिंदी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 5:05 पर रोजाना हमारे केंद्र से आप सुनते हैं कार्यक्रम भजन संध्या। युवाओं के लिए प्रसारित किया जाता है युव मंच कार्यक्रम रोजाना 5:30 पर। 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से आप सुनेंगे। और 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने गल तो सादी। लाइव फोन इन कार्यक्रम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा। 7 बजे हिंदी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, इस मैच का आंखों देखा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे 7:10 से। 8:45 पर समाचार संध्या का अंक और 9 बजे न्यूज एट 9 अंग्रेजी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। और इसके बाद ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा मैच की समाप्ति तक देर रात 11 बजे। हिंदी समाचार बुलेटिन हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो दोस्तों ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर।

6:55 होने को है। कुछ ही देर में संस्कृत समाचार और उसके पश्चात 7:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और 7:05 पर लौट करेंगे आप सभी के रेडियो सेट्स पर लेकर कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। बनी रहिए एफएम हमीरपुर के साथ आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: अपनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत सानन्दं प्रतिवर्षं विंशति कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन पञ्चशत कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 यावत् भारते पञ्च सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक सञ्जालीयतन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकासयात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानाम् आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीनसत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्तमासस्य 23-दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीयकार्यमन्त्री किरण रिजिजु सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलै मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीनसत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रतिविंशतिः विश्वचषके लण्डन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अन्त्यद्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलं सम्मुखीकरिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सारण में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का

0: आरंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि यह विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात, हमीरपुर कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को मधु का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, घनिखम्मा, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, हम आपके रेडियो सच पर आ चुके हैं लेकर प्रोग्राम सुप्रभात हमीरपुर। जी हाँ, वो प्रोग्राम जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार, हमारा ये दैनिक कार्यक्रम जिसमें हम ढेर सारी बातें करते हैं अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ खूब सारी जानकारियां भी लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि एक अच्छा विचार जो है वो बनाता है अच्छा दिन, अच्छा मूड, और जब मूड अच्छा हो तो पूरा दिन अच्छा रहता है, काम बहुत अच्छे से होता है, राइट? तो जैसे दोस्तों वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, हम उनकी जड़ों को पोषित करते हैं, परिणाम स्वरूप वृक्ष फलने फूलने लगते हैं। वृक्ष को फलता फूलता देखकर हम फलों और फूलों की चाहत में वृक्ष की जड़ को भूल भी जाते हैं। कभी कभी कालांतर में वृक्ष सूख जाते हैं और तब हमें फल फूल तो छोड़िए छाया भी प्राप्त नहीं होती। किंतु जो अच्छे बागवान होते हैं वे जड़ों से जुड़े रहते हैं, वे सत्य को जानते हैं कि निरंतर फल फूल प्राप्त करते रहने के लिए पेड़ की जड़ों को पुष्ट रखना बहुत जरूरी है। वो जानते हैं कि फल फूल पेड़ से निकलकर बाजार में और बाजार से विभिन्न हाथों में पहुंचेंगे, किंतु वृक्ष वहीं रहेगा जहां उसकी जगह है। रहीमदास जी बहुत उपयोगी सूत्र दे करके गए हैं। वे कहते हैं कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहिमन मूल ही सींचिबो, फूल ही फल ही अधाए। तो बिल्कुल दोस्तों, जड़ों से जुड़े रहिए, क्योंकि जो रूट्स है ना, ये बहुत स्ट्रांग होती है और इनके साथ हमारा कनेक्शन भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? आप समझ ही गए होंगे कि मैं उन वृक्षों की बात कर रही हूँ जो हमारे बुजुर्ग हैं। उनके साथ हम जुड़ेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे सर पर रहेगा हमेशा हमेशा, वो हमें सदमार्ग, अच्छा मार्ग, अच्छी डायरेक्शन देते रहेंगे। और बाकी तो दोस्तों, जो जीता है वो अंततः हार जाता है और जो हारने को तैयार हो जाता है वही परम विजय को उपलब्ध होता है। तो बिल्कुल सब टेंशन्स भूल के, छोड़ छाड़ के अपने प्रेजेंट में रहिए, जो है उस पर फोकस कीजिए और बाकी तो सब कुछ आता जाता रहेगा। ऐसे

0: बिल्कुल, ये जो गाना है ना, ये हमें बिल्कुल प्रेजेंट में जीना सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि हमें हर पल शिद्दत से महसूस करना चाहिए।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ
5: जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: PLI है ना?
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: अपनी ट्यून के एफएम हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज पर बिल्कुल म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर आपका प्रोग्राम लेकर सुप्रभात हमीरपुर। चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में और जानते हैं क्या हुआ था आज के दिन खास, बता रहे हैं आपको आज का इतिहास। इसराइल अधिकृत जेरिको में फिलिस्तीनी स्वशासन की औपचारिक शुरुआत हुई थी 1994 में आज ही के दिन। आज है 5 जुलाई और पीट सम्प्रास ने पांचवी बार विंबलडन का एकल खिताब जीता था 1998 में आज ही के दिन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा तालिबान पर प्रतिबंध की घोषणा 1999 में हुई थी आज ही के दिन। और शंघाई दुशानबे में शंघाई में पांच देशों का सम्मेलन प्रारंभ हुआ था 2000 में आज ही के दिन। चुनाव में पराजय के बाद बल्गेरिया के प्रधानमंत्री श्वान कोस्तोब ने अपने पद से इस्तीफा दिया था 2001 में आज ही के दिन। और नेपाल की अंतरिम कैबिनेट ने संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित किया था 2008 में आज ही के दिन। ग्रीस ने यूरो कप 2004 फुटबॉल प्रतियोगिता जीतकर इतिहास बनाया था 5 जुलाई को 2004 में। पीवी सिंधु भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी जिनका जन्म हुआ 5 जुलाई को 1995 में। भारत के निवेशक एवं शेयर व्यापारी राकेश झुंझुनूवाला 1960 में इनका जन्म हुआ। भारत के नामी जीव विज्ञानी लालजी सिंह 1947 में इनका जन्म हुआ। और प्राध्यापक और रचनाकार असगर वजाहत 1946 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ। और हिंदी साहित्य के जाने माने लेखकों में से एक शरद पगारे 1931 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ। सचिन नाग प्रसिद्ध भारतीय तैराक 1920 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ। इन सभी को हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बीएन सरकार 1901 में प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और न्यू थिएटर्स कलकत्ता के संस्थापक जिनका जन्म हुआ आज ही के दिन। और दोस्तों हम मना रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह और साथ ही नेशनल वर्कहोलिक डे यानी कि राष्ट्रीय कर्मठ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जिसके बारे में हमारे अपने सेगमेंट अगले सेगमेंट में हम आपसे बातचीत करेंगे। यहां पर लेते हैं एक कमर्शियल का म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर। बने रहिए एफएम हमीरपुर के साथ आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़।
1: क्या बात है, खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
2: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
2: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
2: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
2: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
2: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
3: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
7: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
6: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
7: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
6: वो कैसे?
7: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
6: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
7: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
6: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
7: फायदा ही फायदा, परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
6: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
7: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के रेडियो सेट्स पर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुप्रभात। आज बना रहे हैं हम राष्ट्रीय कर्मठ दिवस, नेशनल वर्कहोलिक डे। प्रत्येक वर्ष 5 जुलाई को हम इसे मनाते हैं। उन लोगों को समर्पित ये दिन है जो अपने काम को लेकर अत्यधिक जुनूनी, लेकिन साथ ही यह हमें काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने की याद भी दिलाता है। जी हाँ, संतुलन का संदेश देता है ये दिन, याद दिलाता है कि मेहनत और लगन जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य, परिवार और निजी जीवन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। काम की लत के खतरों जैसे तनाव और थकान के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को खुद के लिए समय निकालने के लिए प्रेरित करना इस दिन का उद्देश्य है। और इस दिन अत्यधिक मेहनत करने वालों के योगदान को स्वीकार भी किया जाता है दोस्तों, और उन्हें कुछ देर के लिए अपनी डेस्क से दूर रहकर आराम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। ऑफिस से छुट्टी लें और तनाव मुक्त होकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और उस शौक और गतिविधियों को पूरा करें जिन्हें आप आमतौर पर काम की व्यस्तता के कारण नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, जैसे स्पा सेशन बुक करना या प्रकृति के बीच समय बिताना। और दोस्तों, हम साथ ही मना रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह। भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला एक देशव्यापी वृक्ष रोपण उत्सव, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना। और ये समय भारत में मॉनसून की शुरुआत का होता है, जो पौधों को लगाने और उनके जीवित रहने के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है दोस्तों। और इसीलिए हमने ये वर्ष चुना, 1 जुलाई से 7 जुलाई। जी हाँ, ये महीना वन महोत्सव की शुरुआत आधिकारिक तौर पर वर्ष 1950 में की गई थी। तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने इस हरित आंदोलन की नींव रखी थी और इसका मुख्य नारा है, हर व्यक्ति एक पौधा, ईच वन प्लांट वन, जिसे होता है ग्लोबल वार्मिंग से बचाव। साथ ही मिट्टी का संरक्षण, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे भूक्षरण, सॉइल इरोजन और बाढ़ का खतरा जो है वो कम हो जाता है। औषधियां, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करना और हमें फल, ये प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों। जो हमें जीवन प्रदान करते हैं। तो बिल्कुल मन महोत्सव खुशी से मनाएं और जरूर एक पेड़ तो अवश्य लगाएं। दोस्तों आपको बता दें कि आधार से जनरेट होगा यूएएन। यूएएन एक्टिव करना या नया बनाना सदस्य अब ईपीएफओ वेबसाइट के यूएएन एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की हम बात कर रहे हैं एक्टिव नहीं कर सकेंगे। नया यूएएन भी जनरेट नहीं किया जा सकेगा। दोनों सेवाएं उमंग ऐप पर स्थानांतरित कर दी गई हैं और यूएएन सक्रिय करने और जनरेट करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। और यूए सक्रिय करने के लिए उमंग ऐप पर ईपीएफओ सर्विसेज में यूएन एक्टिवेशन पर जाएं। इसी तरह नया यूएन जनरेट करने के लिए यूएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन पर क्लिक करना होगा। और पीएफ अकाउंट, लेकिन अगर आपका पीएफ अकाउंट है लेकिन यूएन नहीं, तो जिन कर्मचारियों के पास पहले से ईएफ खाता है लेकिन उन्हें अभी तक यूएन आवंटित नहीं किया गया है, वे अभी भी इसे हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सत्यापित करना होगा और ज़रूरी सदस्य विवरण भरना होगा और सत्यापन पूरा करना होगा और इसके बाद यूएन जनरेट होगा, उसे मौजूदा ईपीएफ खाते से लिंक कर दिया जाएगा। कोई सदस्य अपना यूएन भूल गया है तो अपग्रेड पोर्टल पर इसे फिर हासिल करने की प्रक्रिया सरल बनाई गई है और इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, आवश्यक पहचान पत्र या पते का प्रमाण अपलोड करना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा। सत्यापन के बाद यूएन आपको मिल जाएगा और ईपीएफओ पोर्टल पर ही होंगे मृत्यु के दावे भी। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और डेथ सर्टिफिकेट इसके लिए ज़रूरी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के इस कार्यक्रम का समय हो रहा है पूरा 7:30 हुए हैं दोस्तों। और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संसार।

लोक संसार कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जी दोस्तों, आइए करते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मंजू भारद्वाज और सीमा भारद्वाज के गाए इस गीत के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपके साथ हिमाचल से जुड़ी हुई जानकारियां साझा करते हैं, अपने प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारियां साझा करते हैं। आइए पहले सुनते हैं ये गीत।

जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संसार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश माना जाता है। जिस प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में देवी देवताओं का वास माना जाता हो, वहाँ लोगों में भी देवी देवताओं के प्रति अनूठी आस्था और विश्वास देखने एवं सुनने को मिलता है। और इसी प्रकार की खास आस्था और विश्वास के लिए प्रदेश भर में प्रसिद्ध माना जाता है जिला सिरमौर के आंज भोज के गाँव धनला का शिरगुल व विजट महाराज। जी हाँ, ऐतिहासिक मंदिर, क्योंकि अमूमन देवी देवताओं के मंदिर एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर देखने एवं सुनने को मिलते हैं, तो वहीं ज़िला सिरमौर का ये इकलौता ऐसा दुर्लभ मंदिर है दोस्तों, जिस क्षेत्र में दो देवताओं के ऐतिहासिक मंदिर साथ साथ देखने एवं सुनने को मिलते हैं। क्षेत्र समाज के बुद्धिजीवियों एवं धार्मिक विद्वानों की जानकारी अनुसार लोगों की मान्यता है कि चूड़धार में शिरगुल महाराज का शीश विराजमान है, तो वहीं इस क्षेत्र के धनला गाँव के मंदिर में शिरगुल महाराज के चरण विराजमान माने जाते हैं। और ऐसी परंपरा और आस्था श्रद्धालुओं में मानी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर इस ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर धनला गांव में हर वर्ष विजट महाराज के मुख्य मंदिर सराहन से विजट महाराज के बकरों को प्रवास के लिए सैकड़ों की संख्या में इस ऐतिहासिक मंदिर में लाया जाता है, जहां पर अनेकों माह तक उनका स्थानीय जंगल में भरण पोषण किया जाता है और अनेकों महीनों के उपरांत वापस विजट महाराज के मुख्य मंदिर सराहन की ओर इन्हें ले जाया जाता है। कहा जाता है कि ये परंपरा राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही है, जो वर्तमान समय में भी देखने और सुनने को मिलती है। तो वहीं एक और चमत्कार की हर सुबह इस मंदिर में बिना किसी वाद्य यंत्र व व्यक्ति के नबद स्वयं ही बजती है, जिसके उदाहरण पुजारियों एवं श्रद्धालुओं से सुनने को मिले हैं, जो कहीं ना कहीं इस मंदिर की शक्ति और आस्था के रूप में श्रद्धालुओं में और अधिक मान्यता और विश्वास को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार इस मंदिर की लोकप्रियता और धार्मिक आस्था प्रदेश भर में अनूठी मानी जाती है। वैसे भी देवभूमि हिमाचल, जी हाँ, देवी देवताओं का प्रदेश, जहाँ हर जगह हर मंदिर में कोई ना कोई चमत्कारिक रूप से हमें कुछ ना कोई चमत्कार देखने को मिल ही जाता है, जो ईश्वर अपना प्रमाण देते हैं कि वो कण कण में व्याप्त हैं, कण कण में विराजमान हैं और हमारी आस्था को और अधिक, हमारी श्रद्धा को और अधिक बढ़ा देते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संसार।

जी दोस्तों, बिल्कुल गौरी शंकर जी हाँ, ईश्वर का वो स्वरूप जो हमें हमेशा हमेशा अच्छे मार्ग सत्मार्ग की ओर बढ़ाता है, सच्चा मार्ग दिखाता है। आप सुन रहे हैं लोक संसार कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे लोसर की। जी हाँ, ये एक ऐसा त्यौहार है जो जनजातीय क्षेत्रों में नए साल के आगमन पर वैसे तो मनाया जाता है। हिमाचल के जनजातीय आंचलों में नया साल केवल तिथि नहीं बल्कि आस्था, प्रतीक, प्रकृति और सामूहिक जीवन का उत्सव इसे कहा जाता है दोस्तों। जी बिल्कुल, हिमालय की ऊंची घाटियों विशेषकर ऊपरी किन्नौर, लाहौल स्पीति और तिब्बती संस्कृति के प्रभावित क्षेत्रों में लोसर का आगमन कठोर सर्दियों के बीच नई आशा, शुद्धि और नवीकरण का संदेश लेकर के आता है। किसी आधुनिक घड़ी या तारीख से नहीं बल्कि प्रकृति के चक्र, सामुदायिक अनुभव और पारंपरिक जीवन शैली से जो है नए वर्ष का लोसर का जो आगमन है वो तय होता है। महीनों तक बर्फ से ढके रहने के बाद लोसर समाज को बाहर निकालता है, रिश्तों को जोड़ता है और आने वाले वर्ष के लिए मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तैयारी कराता है। ऊपरी किन्नौर में लोसर का स्वरूप विशेष रूप से व्यापक और जीवंत है। लिप्पा, कानम, रिब्बा और आसपास के गाँव में ये पर्व कई स्थानों पर 3 से 4 दिन और कहीं कहीं तो इससे भी अधिक समय तक मनाया जाता है और इन दिनों में पूरा इलाका मानो एक सामूहिक उत्सव स्थल में बदल जाता है। पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीत, नृत्य, मठों और गोम्पाओं में प्रार्थनाएं तथा घर घर अतिथि सत्कार सब मिलकर ये दर्शाते हैं कि यहाँ लोसर व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामुदायिक जीवन का पर्व है। ऊपरी किन्नौर में लोसर की विशेषता इसलिए भी है क्योंकि इस क्षेत्र के तिब्बत के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। पुराने व्यापारिक मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने यहाँ के सामाजिक जीवन में लोसर को गहराई से रचा बसाया है। जी हाँ, जिसका अर्थ है लो अर्थात वर्ष और सर अर्थात नया। इसका मूल तिब्बत में है जहाँ ये तिब्बती चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि लोसर की परंपरा बौद्ध धर्म से भी पहले की बोन परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें सर्दियों के अंत में शुद्धि और नकारात्मक शक्तियों के निवारण के अनुष्ठान किए जाते थे। बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव से ये पर्व आध्यात्मिक अनुशासन, करुणा और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गया। तिब्बत में लोसर कई दिनों तक चलता है और उसी परंपरा का स्थानीय रूप हिमालयी भारत में देखने को मिलता है। जनजातीय क्षेत्रों में लोसर की तैयारी कई दिन पहले आरंभ हो जाती है दोस्तों। घरों की सफाई, पुराने और अनुपयोगी सामान का त्याग, पूजा स्थलों की साज सज्जा से ये केवल बाहरी क्रियाएं नहीं बल्कि भीतर की शुद्धि का प्रतीक भी से माना जाता है। विश्वास गहराई से जुड़ा है कि जैसे घर को साफ किया जाता है वैसे ही मन और जीवन को भी बीते समय की नकारात्मकताओं से मुक्त किया जा सके। पर्व के शुरुआती दिनों में तो मठों और गोम्पाओं में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं, लामाओं से आशीर्वाद लिया जाता है और पूरे समुदाय के सुख समृद्धि के लिए सामूहिक कामनाएं की जाती हैं। किन्नौर और आसपास के जनजातीय इलाकों में लोसर से जुड़ा एक अत्यंत विशिष्ट और अर्थपूर्ण अनुष्ठान सत्तू के आटे से बनाए गए लोसर का होता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार भुने हुए अनाज, जौ या अन्य स्थानीय अनाज से सत्तू तैयार किया जाता है और उसी से लोसर का प्रतीकात्मक आकार जो है वो मनाया जाता है। केवल ये भोजन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, पोषण और कठिन पर्वतीय जीवन में जटिलता का प्रतीक इसे माना जाता है। लंबे शीतकाल में यही भुना हुआ आटा जीवन का सहारा रहा है दोस्तों, इसीलिए नए वर्ष की शुरुआत इसी से करना विशेषतः शुभ माना जाता है। मान्यता है कि लोसर बनाए जाने के 2 दिन बाद इसकी विधिवत जो है वो पूजा की जाती है और इस अवसर पर सत्तू के आटे से बने लोसर पर फूलों की मालाएं भी चढ़ाई जाती हैं। सम्मान पूर्वक विशेष पारंपरिक पात्र या संरक्षित स्थान के भीतर इसे रखा जाता है और उसके चारों ओर दिए जलाते हैं और दियों का प्रकाश अंधकार पर उजाले की विजय, अज्ञान पर ज्ञान और नकारात्मकता पर सकारात्मकता का प्रतीक इसे माना जाता है। अनुष्ठान केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक शुद्धि का भी माध्यम है दोस्तों, जिसे पूरे वर्ष के घर और समुदाय में शांति, संतुलन और समृद्धि की कामना की जाती है। लोसर से जुड़ी लोक मान्यताएं इस पर्व को और गहराई प्रदान करती हैं दोस्तों। कई क्षेत्रों में विश्वास प्रचलित है कि लोसर की पूजा के बाद अगले दिन सुबह सबसे पहले जो दृश्य दिखाई देता है वही पूरे वर्ष के शुभ अशुभ का संकेत होता है, इसलिए सुबह लोग अत्यंत सजगता और श्रद्धा के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ये मान्यता भी प्रचलित है कि यदि पहली दृष्टि में चूहा दिखाई दे तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ये भंडारण क्षमता, चतुराई और समृद्धि का प्रतीक, ऐसे गुण जो कठिन पर्वतीय जीवन में अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। विश्वास दर्शाता है कि जनजातीय समाज प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ कितनी गहरी
प्रतीकात्मक समझ विकसित करता है। तो दोस्तों, स्थानीय समुदाय के नेतृत्व में पर्यावरण अनुकूल तरीकों और सांस्कृतिक मर्यादा के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व अंततः लोसर ये सिखाता है हमें कि इसका जो अर्थ है केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन को नए सिरे से शुद्ध, संतुलित और अनुशासित करना है। सत्तू के आटे से बने लोसर की पूजा, फूलों की मालाएं, दीयों का प्रकाश और लोक मान्यताएं, ये सब मिलकर ये संदेश देते हैं कि नया साल बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। और ये लोसर का सार है दोस्तों, नववर्ष प्रकृति और जनजातीय जीवन के बीच एक गहरा जीवंत संवाद। तो ये एक लोसर जो पर्व हम बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं हमारे ऊपरी इलाकों में। जी हाँ, बिल्कुल। और हर पर्व हमें यही संदेश देता है कि जीवंत रहें, बैलेंस्ड रहें और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत हो। और बिल्कुल यही सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके आसपास भी बनी रहे, इसी कामनाओं के साथ चलिए आगे सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संसार, और चलिए अब कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 तक 10,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। घोषणा शिक्षा मंत्री ने शनिवार को पोर्टमोर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने पीएम श्री स्कूलों में 150 जल्द संगीत शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की, और इसके बाद सीबीएसई से संबद्ध अन्य सरकारी स्कूलों में भी चरणबद्ध तरीके से संगीत शिक्षक तैनात किए जाएंगे, और समग्र शिक्षा के तहत 90% से 100% तक बजट खर्च सुनिश्चित किया गया है, जिसमें स्कूल्स में सुविधाएं और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हुई है, और खेलों के विकास के लिए आधुनिक आधारभूत ढांचा भी तैयार किया गया है। प्रदेश में 11 स्पोर्ट्स हॉस्टल संचालित हैं, जबकि चौपाल और शिलाई में नए हॉस्टल भी शुरू किए जाएंगे।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु अब परिवहन विभाग की ओर से आयोजित ड्राइविंग टेस्ट में शामिल होने से पहले आवेदनकर्ताओं को ऑनलाइन स्टॉल बुक करना होगा और एसडीएम ने आवेदनकर्ता पर जाकर कर www.parivahan.government.in यानी .gov.in पर जाकर के ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्टॉल बुक किया जा सकता है। इसके कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और घर बैठे सुविधा मिल सकेगी। स्टॉल बुक होने के बाद निर्धारित तिथि पर ड्राइविंग टेस्ट दिया जा सकेगा। टेस्ट के दिन आवेदनकर्ता को लर्नर लाइसेंस, ऑनलाइन स्टॉल बुकिंग की रसीद और फॉर्म संख्या 2 लाना अनिवार्य होगा और 7 जुलाई 2026 को होने वाले ड्राइविंग टेस्ट के सभी आवेदनकर्ता समय रहते ऑनलाइन स्टॉल बुक कर लें। आगे भी टेस्ट के लिए 1 सप्ताह पहले स्टॉल बुकिंग खोली जा सकती है।

पुलिस ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नशे के खिलाफ जागरूकता सेशन का आयोजन किया और उन्होंने बताया कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सेहत, पारिवारिक जीवन और समाज का पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लोगों को नशीले पदार्थों से दूर

जिले में किसानों को अपनी सब्जियों और फलों के पीक सीजन पर उचित दाम न मिलने पर अब कोल्ड स्टोर की सुविधा में भी मिलेगी, जिससे 3 निजी कोल्ड स्टोर खुल गए हैं। इससे पहले हमीरपुर में कोई भी कोल्ड स्टोर नहीं थे, जिसके चलते किसानों को कई बार अपनी फसलों को सस्ते दामों पर बेचना पड़ा। फलों और सब्जियों के किसान अब बर्बाद

बांध में लगातार बढ़ रही गाद अब बीबीएमबी के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। जलाशय की घटती भंडारण क्षमता, बिजली उत्पादन पर असर और गेटों के संचालन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए बीबीएमबी ने आईआईटी मंडी से वैज्ञानिक सर्वे कराने का निर्णय लिया है और इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सर्वे के दौरान विशेषज्ञ आंकलन करेंगे कि जलाशय में गाद कितनी मात्रा और कितनी गहराई तक जमा हो चुकी है, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है तथा समस्या के स्थायी समाधान के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। वर्ष 2023 और 25 की प्राकृतिक आपदाओं के बाद जलाशय में गाद का स्तर तेजी से बढ़ा है और ये मानना है कि तकनीकी अध्ययन के आधार पर भविष्य की कार्य योजना तैयार की जाए। अतिरिक्त अधीक्षण आईआईटी मंडी की टीम वैज्ञानिक सर्वे पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी जिससे आगे की रणनीति तय करने में मदद मिलेगी। जल विद्युत तंत्र का संचालन प्रभावित हो रहा है और स्लिपवे के गेटों के जाम होने की स्थिति बन रही है। गाद बहकर सुंदरनगर संतुलन जलाशय तक पहुंच रही है और जलाशय की बड़ी भंडारण क्षमता का अधिकांश हिस्सा गाद से भर चुका है। इसके कारण ढेर पावर हाउस की मशीनों पर भी दबाव पड़ रहा है, तो स्थिति को देखते हुए इसकी निकासी का कार्य भी शुरू किया जा चुका है।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य किशोरियों को महिला सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, लैंगिक समानता और बालिका सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करना था। और दोस्तों इसके साथ अब आज के इस कार्यक्रम का समय हो रहा है पूरा। अपनी रेडियो दोस्त मधु को आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए, लेकिन प्रेजेंट पर ध्यान रखिए। इसी नोट के साथ आज का ये कार्यक्रम अपनी रेडियो दोस्त मधु को यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपने ट्यून किया FM हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजे हैं, अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला

0: अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
5: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसर सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of Regional Air Connectivity Scheme Viksit Udaan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
9: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है.
8: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
9: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है. चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है. साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा.
8: Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu also said that the launch of the Viksit Udaan scheme will mark the next chapter of India's regional connectivity journey. Mr. Naidu said the scheme, launched by Prime Minister with an outlay of over 28,840 crore rupees, will facilitate the development of over 100 new aerodromes and 200 helipads, bringing the dream of affordable air travel closer to millions and connecting the aspirations of a rising India.
10: It is the vision of Prime Minister Narendra Modi that wherever there is expansion of civil aviation, it should benefit not just passengers but also the economy of the entire city, businesses, students and every sector as well as citizens. We can see the effect across the country today.
8: Later in the day, Prime Minister Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test, or OSAT, plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
9: Bharat jo thaan leta hai, wo karke dikhata hai. 5 saal pehle Bharat ne sankalp liya tha ki desh ko semiconductor hub banayenge. Hum design in India, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है.
8: Mr. Modi also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
9: यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी. आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं. आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा. मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे.
8: Earlier, upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Government has increased the procurement price of onions for the price stabilization buffer by 13% from 1875 rupees per quintal to 2125 rupees per quintal. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that the revised procurement price will ensure better returns for onion farmers while supporting buffer procurement efforts. A report.
4: The procurement of onions through the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited and National Cooperative Consumers Federation of India Limited for the government's price stabilization buffer is in progress. As per the second advance estimates of the Department of Agriculture and Farmers Welfare for 2025-26, onion production is estimated at over 307 lakh metric tons. The ministry said that the current stock levels in Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat are adequate and at present there are no indication of any shortage of stored onions. The All India average retail price is 31 rupees per kilogram. Onion exports are also normal, with about 1,50,000 metric tons exported during June this year. With Dipendra Kumar, Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
8: The monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that ethanol is not a new concept and has been in use for over a century. Addressing a gathering in Rajasthan, Mr. Puri said that the government welcomes constructive criticism of the government's biofuel blending program and assured that the government will incorporate suggestions into its work and make necessary corrections. Mr. Puri also said that the idea of ethanol blending in India was first initiated during the previous Congress-led government.
3: For those of you who have worked with me and know me, criticism ko main welcome karta hu. Aapko kuch lage ki hum jo kaam kar rahe hain agar usme koi kami hai to aap bataiye, hum aapki baat sunenge, aapke sujhav jo hain unko hum apne kaam mein incorporate karenge and we will make the correction.
8: Moreover, industry experts have also said that ethanol blending program has not been introduced overnight but has been implemented through a measured, step by step and scientifically driven process. Addressing a press conference in New Delhi, former chairman and managing director of Engineers India Limited, Vartika Shukla, said that ethanol blending program was placed in the public domain for structured discussions and stakeholder consultations in 2018.
11: The ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence, extensive testing by the automotive manufacturers and the agencies who support them, namely the Automotive Research Association of India. And also it is in line with the global best practices which is followed to green the fossil fuels to lower the carbon emissions.
8: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIN News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. As part of our series, Prakriti Ki Baat Akashvani Ke Saath, we bring you a conversation with Mr. Devinder Sura, who has been working towards tree plantation and environmental conservation. To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashvani Gold this morning at 10:30 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Australian Prime Minister Anthony Albanese has hailed India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit to Australia from 8th to 10th of this month. In a statement, Australian Prime Minister's office said, as world's fourth largest and fastest growing economy, India is a critical economic partner for Australia. Mr. Albanese said, Australia's relationship is underpinned by comprehensive strategic partnership and supported by deep economic and cultural connections. He said India-Australia cooperation on trade, defence, security and technology is delivering benefits for both the countries. The India Meteorological Department, IMD, has said that heavy monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. IMD said a well-marked low-pressure area over the northwest Bay of Bengal is expected to keep the monsoon active across central India for the next 4 to 5 days. It also said the southwest monsoon is likely to advance into the remaining parts of Haryana, Punjab and Rajasthan, along with parts of Gujarat and the North Arabian Sea over the next 4 days. A severe heat wave is sweeping across the eastern United States, placing significant pressure on power grids, disrupting preparations for FIFA World Cup matches. We have a report.
12: With the heat index expected to exceed 46 degrees Celsius, New York City, the most populous city in the United States, is bracing for unprecedented temperatures, while heat warnings have expanded across the northeastern states and the central Atlantic coast. New York City authorities have introduced a series of measures to address the extreme heat, including converting hundreds of public buildings into cooling centers, deploying volunteers to check on vulnerable groups, and extending the opening hours of the public swimming pools across the city. The U.S. National Weather Service said that due to high humidity levels, the heat index could reach 41 degrees Celsius in Boston, 44 degrees Celsius in Philadelphia, and 45 degrees Celsius in Washington. The agency also forecast record-breaking temperatures during Independence Day celebrations, with the potential for consecutively daily records to be broken, in addition to monthly records and possibly the highest temperatures ever recorded. Jigyasa Pandey, Akashvani News, Delhi.
8: On to sports now. In football, France and Morocco stormed into the quarterfinals of FIFA World Cup. We have a report.
13: France booked their place in the quarterfinals with a hard-fought 1-0 victory over Paraguay in the round of 16 at Philadelphia. Captain Kylian Mbappe scored the only goal of the match from the penalty spot in the 70th minute. France will now face Morocco in the quarterfinals. Moreover, Morocco also stormed into the quarterfinals with a commanding 3-0 victory over co-host Canada in Texas. Soufiane Rahimi sealed the win with a stoppage-time goal as the African champions booked their place in the last eight in emphatic fashion. Earlier, defending champions Argentina also progressed to the round of 16 after defeating Cabo Verde 3-2 following extra time in a thrilling round of 32 encounter. Argentina will next face Egypt. Meanwhile, in the final round of 32 match played yesterday at Kansas City Stadium, Colombia edged past Ghana 1-0 to secure a place in the round of 16. They will now face Switzerland for a spot in the quarterfinals. With Vikas, Chirag Jha from Sports Desk.
8: In men's cricket, England defeated India by 4 wickets in the second T20 international of the 5-match series at Old Trafford in Manchester yesterday. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
14: Thank you, Saira. Papers have widely noted Prime Minister Modi's visit to Gujarat and Rajasthan, where he inaugurated path-breaking developmental projects, while the new EV policy in the state capital has also gained traction. Hindustan Times writes, India overcame crisis on refining prowess. We'll keep building, says Prime Minister. The Hindu notes, Modi inaugurates semiconductor facility in Gujarat. The Sunday Express headlines, new EV policy empowers middle class. Delhi transforming has chosen a new direction for cleaner, more modern future. Sunday Times informs, City Court cites Supreme Court order, denies bail to Sharjeel Umar. Telegram told to act against piracy or face action, writes the Economic Times. And finally, indeed, love knows no bounds. The Sunday Express writes about one Zeeshan Ahmed who crossed the LOC to meet his love, Iram Majid. The two had fallen in love over Snapchat. A month after he crossed LOC for love, 22-year-old POK man sent back. And with that, it's back to you, Saira.
8: Thanks, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a great day.
15: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर. 8:30 हुए हैं. लीजिए प्रस्तुत है हिमाचल डायरी का आज का अंक. हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है. आज के इस अंक में, प्रदेश में मॉनसून इस समय पूरी तरह सक्रिय है और प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राज्य में हुई बारिश सामान्य से लगभग 33% अधिक दर्ज की गई, जबकि मॉनसून सीजन की शुरुआत से अब तक कुल 38.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 86% अधिक है. लगातार हो रही भारी बारिश अब जानमाल के नुकसान का कारण भी बन रही है. किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों में फ्लैश फ्लड की घटनाओं से सरकारी एवं निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 6 जुलाई से एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिससे भारी से भारी बारिश हो सकती है. और इसी को देखते हुए 6 और 7 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, चंबा और कुल्लू में येलो अलर्ट घोषित किया गया है. 8 और 9 जुलाई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है. प्रदेश में ग्रीन कवर बढ़ाने की दिशा में इस बार मॉनसून के दौरान बड़ा अभियान चलाया जाएगा। वन विभाग ने प्रदेश भर में 7 से 8 हजार हेक्टेयर भूमि पर 50 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है और इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ पौधारोपण करना नहीं बल्कि वर्ष 2030 तक प्रदेश के ग्रीन कवर को 32% तक पहुंचाने की मिशन की गति देना भी है। इस बार पहली बार कई क्षेत्रों में चिनार सहित स्थानीय जलवायु के अनुरूप विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग के अनुसार करीब 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत पौधारोपण होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना और राजीव गांधी ग्रीन एडॉप्शन योजना के माध्यम से भी खाली और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों को फिर से हरा भरा बनाने का काम किया जाएगा। सभी वन मंडल को लक्ष्य सौंप दिए गए हैं और मॉनसून शुरू होते ही अभियान तेज कर दिया गया है। वन विभाग के मुखिया डॉक्टर संजय सूद ने कहा है कि ग्रीन कवर बढ़ाने का लक्ष्य केवल वन विभाग अकेले पूरा नहीं कर सकता, इसके लिए जन भागीदारी सबसे जरूरी है और उन्होंने लोगों से पौधे लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल करने की भी अपील की है। खुले में शौच मुक्त राज्य बनने के बाद प्रदेश अब ग्रामीण स्वच्छता के अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के करीब 7000 गांव में मलिय कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था विकसित की जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग और जल शक्ति विभाग मिलकर चिन्हित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में फीकल स्लज को ट्रीटमेंट की सुविधा तैयार कर रहे हैं। इससे सेप्टिक टैंक से निकलने वाली अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित होगा और जल स्रोतों के प्रदूषण पर रोक लगेगी। हिमाचल के पहाड़ों, भूगोल, वन क्षेत्र की अधिकता, भूमि की कमी और अलग अलग फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने में अधिक खर्च को देखते हुए मौजूदा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में ही को ट्रीटमेंट मॉडल अपनाया गया है और इस मॉडल के तहत सेप्टिक टैंक से निकाले गए मलिय कचरे को एसटीपी में लाकर सीवेज के साथ वैज्ञानिक तरीके से उपचारित किया जाएगा। इससे नए संयंत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और मौजूदा एसटीपी का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित होगा। प्रदेश में कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होने जा रही है। धर्मशाला में राज्य का पहला रिमोट सेंसिंग एवं डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम केंद्र स्थापित किया जाएगा। करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना को केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इसके शुरू होने से कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पूरी तरह तकनीकी आधारित होगी और किसानों को समय पर वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराना आसान हो जाएगा। धर्मशाला में बनने वाला ये केंद्र प्रदेश का पहला रिमोट सेंसिंग केंद्र होगा। इसके लिए भूमि संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और इस केंद्र के माध्यम से कृषि विभाग सैटेलाइट और अन्य आधुनिक तकनीकों की मदद से मौसम, फसलों की स्थिति, भूमि उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों और कृषि से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े स्वयं एकत्र करेगा। अभी इस तरह के कई आंकड़ों के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन केंद्र बनने के बाद विभाग के पास अपना डिजिटल डेटा उपलब्ध होगा। इस परियोजना का लाभ केवल कृषि विभाग तक सीमित नहीं रहेगा। हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:35 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं निकिता गांधी की आवाज़ में बागी थ्री फिल्म से, गीतकार और संगीतकार हैं रेने बंडाली और तनिष्क बागची, बोले डू यू लव मी।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए नकश अजीज और मधुबंती बाख्शी की आवाजों में लव्यापा फिल्म का गाना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए राघव राजा हसन की आवाज़ों में वेल्डन अब्बा फिल्म का गाना। अशोक मिश्रा हैं गीतकार और संगीतकार हैं शांतनु मोइत्रा।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए हर्षित सक्सेना और साथियों की आवाज़ों में सब कुशल मंगल। इस फिल्म का गाना गीतकार हैं समीर अनजान और संगीतकार हैं हर्षित सक्सेना।
1: उड़ गए तोते, उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए।

बाहुबली वार किया, जीना दुश्वार किया, तेरे मेरे रास्ते में खड़ी दीवार किया, है ना, है ना। प्रेम के थाने में मैंने दिल का एफआईआर किया, तूने मुझे प्यार किया, मैंने तुझे प्यार किया, है ना, है ना।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में यारियां फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

अभी आप सुन रहे थे बैंगिस्तान फिल्म का गाना। लीजिए सुनिए लव ब्रेकअप्स जिंदगी। इस फिल्म का गाना बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज़ों में, गीतकार हैं जावेद अख्तर और तर्ज बनाई है सलीम सुलेमान ने।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज़ में पुष्पा फिल्म का गाना। रकीब आलम ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है देवी श्री प्रसाद ने।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:20 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा आयोजित। प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की लगातार बढ़ रही संख्या। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में अधिकारियों को गति लाने के दिए निर्देश। बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के बागवानों की चिंताएं बढ़ीं और किन्नौर जिला में सहारा योजना असाध्य व गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों के लिए प्रदान कर रही संबल। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नई पहलों के बाद राज्य में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल देर सायं कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इस दिशा में पूर्ण दक्षता व लगन से कार्य करने के उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग में अलग मार्केटिंग विंग स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन उत्पादों की डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर बिक्री की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो किसान खेती छोड़ चुके थे वे भी अब दोबारा खेती की ओर लौट रहे हैं और प्राकृतिक खेती में रुचि दिखा रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों की MSP में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। अब प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए गेहूं की खरीद 80 रुपए, मक्की की 50 रुपए तथा कच्ची हल्दी की 150 रुपए प्रति किलोग्राम और पांगी घाटी के जौ की 80 रुपए प्रति किलोग्राम तथा अदरक 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य करने के बाद प्रदेश में दूध उत्पादन तथा सहकारी डेयरी प्रणाली से जुड़ने वाले किसानों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। सरकार ने गाय के दूध का MSP 32 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का MSP 47 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत डेयरी किसानों के अलावा अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में प्रदेश के दूध उत्पादकों को 300 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कृषि विभाग को कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल क्षेत्र को प्राकृतिक खेती पंचायत घोषित करने की सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़ा भंगाल क्षेत्र में उगाई जाने वाली राजमा के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं गोदावरी वर्मा।
0: केंद्र सरकार ने मूल्य स्थितिकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के मूल्य स्थितिकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के बागवानों की चिंताएं बढ़ गई है। सेब सहित स्टोन फ्रूट की पैदावार कम होने से बागवानों की परेशानी बढ़ गई है। बागवानों का कहना है कि मौसम की बेरुखी के चलते फसल बेहद कम हुई है, दवाइयां और उपकरण महंगे हो गए हैं, खर्चा ज्यादा और आय ना के बराबर रह गई है। इस बार सेब का उत्पादन 6,99,000 मीट्रिक टन से घटकर करीब 4,36,000 मीट्रिक टन रहने का अनुमान है।
2: फल राज्य होने के साथ साथ इसमें 5,000 करोड़ की इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूशन रहता है और इसमें लगभग 4.5 लाख किसान इसके अंतर्गत काम करते हैं जिनका जो इस बागवानी से जुड़े हैं। तो इस बारी जो एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्शन है एप्पल के अंतर्गत वो इस बारी थोड़ा लास्ट ईयर से कम रहेगी, जो जो जिसका अनुमान लगभग 4,36,000 मीट्रिक टन के आसपास विभाग ने लगाया है। जो प्रोडक्शन की में कमी आ रही है, तो थोड़ा सा जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, और थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो लोगों से यही सलाह हमारी विभाग की भी रहेगी कि थोड़ा सा जो विभाग द्वारा जो भी वैरायटीज और जो हम बताते हैं, तो उसकी तरफ लोग अपना आइडेंटिटी की तरफ भी जाएं।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र शिक्षक 10 जुलाई तक ऑनलाइन नामांकन भर सकते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा देश भर के पात्र शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन 100 नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने समर्पण, नवाचार व उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑनलाइन 100 नामांकन पोर्टल 15 जून से खुल चुका है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी सहारा योजना जनजातीय जिला किन्नौर में गंभीर व असाध्य बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत प्रदान कर रही है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में इस योजना का संचालन स्वास्थ्य विभाग से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
3: जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में किन्नौर में सहारा योजना के 25 सक्रिय लाभार्थी हैं। लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया प्रगति पर है। प्रक्रिया पूरी होते ही पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किन्नौर जैसे जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्र में गंभीर बीमारियों का उपचार कराने में लोगों को आर्थिक और भौगोलिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिला कल्याण अधिकारी ने जिले के पात्र नागरिकों से अपील की कि यदि वे सहारा योजना के लिए पात्र हैं, तो वे अपने निकटतम तहसील कल्याण कार्यालय अथवा जिला कल्याण कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जनजातीय जिला किन्नौर में मौसम साफ है, जबकि लाहौल स्पीति में बादल छाए हुए हैं। धर्मशाला में सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 6 व 7 जुलाई को राज्य में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 8 व 9 जुलाई को राज्य में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग में फील्ड में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। लाहौल स्पीति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चंद्रभागा नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जोबरंग पुल पर आवाजाही को लेकर सार्वजनिक सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने जोबरंग पंचायत और आसपास के क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि यदि पुल के ऊपर से पानी बह रहा हो या नदी का जलस्तर अधिक हो, तो किसी भी परिस्थिति में पुल पार करने का प्रयास ना करें। चिकित्सा, आपातकाल या अन्य जरूरी परिस्थितियों में लोग पंचायत प्रतिनिधियों या जिला आपदा संचालन केंद्र से संपर्क व सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने बताया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आधिकारिक निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक जोखिम ना उठाएं और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला का शीर्षक है, हिमाचल में इसी माह मंत्रिमंडल विस्तार संभव, फेरबदल भी होगा। पंजाब केसरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, हाईकमान की अनुमति के बाद भरा जाएगा मंत्री पद। दैनिक जागरण उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है, कृत्रिम ब्रेक देकर नहीं रोक सकते नियमितीकरण, हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हक में सुनाया फैसला। दैनिक भास्कर लिखता है, लोअर मिडल बेल्ट में कम फसल के बीच 15 से सेब सीजन शुरू होगा, ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, 1 करोड़ 31 लाख पेटियां घटने का अनुमान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा आयोजित। प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की लगातार बढ़ रही संख्या। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में अधिकारियों को गति लाने के दिए निर्देश। बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के बागवानों की चिंताएं बढ़ीं और किन्नौर जिला में सहारा योजना असाध्य व गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों के लिए प्रदान कर रही संबल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 हुए हैं और हम आपके रेडियो सेट पर लेकर हाजिर है कार्यक्रम। जी हाँ, लाइव ऑन इन हेलो हमीरपुर। सभी दोस्तों का इस कार्यक्रम में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जो फिल्में हमने शामिल की हैं वो हैं बेटा, चेन्नई एक्सप्रेस, हरियाली और रास्ता, हम दिल दे चुके सनम, करण अर्जुन, बेताब और चलते चलते। इन फिल्मों में से किसी भी फिल्म का गीत आप सुनना चाहें, आप हमें कॉल कर सकते हैं 2231-22 है नंबर, 2231-22 हमीरपुर के बाहर के लिसनर्स के लिए, 01972019972। हेलो हमीरपुर। नमस्कार जी। जी जगदीश जी, कैसे हैं आप? पहला आप जो पहले श्रोता हैं इस कार्यक्रम के, बिल्कुल मौका नहीं छोड़ते आप।
5: नहीं छोड़ते तो हैं, कभी कभी दूसरा जैसा लग जाता है।
4: बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनवाए?
5: हरियाली और रास्ता का सुना दो।
4: कौन सा गीत?
5: हरियाली है और ये रास्ते।

0: हेलो हमीरपुर,
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: अजय गुप्ता फिर बड़ी गलगांव से हो रहा है जी।
0: अजय गुप्ता जी, कैसे हैं आप?
1: मेरे घर में कृपा भी हुआ
0: जी।
1: बारिश लगी हुई है, ये सुबह से बारिश बहुत हो रही है। बहुत बारिश हो रही है।
0: अभी तो बाहर ठीक ही है मौसम, बारिश का तो माहौल बना हुआ है, बट अभी बारिश हो तो नहीं रही। धर्मशाला से यहाँ तक पहुँच जाए तो क्या पता। और बताइए, बाकी सब ठीक ठाक? क्या आपके वहाँ खास?
1: खास क्या, बस मैं तो इंसान को सलाह देता, बारिश हो रही है, घर के अंदर ही रहो जी। खतरा होता है
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये संदेश जो है वो बाकी हमारे सभी दोस्तों तक भी पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि बारिश में घर में है तो फिर भी सेफ है, ऐसे में बाहर का तो यात्रा का कुछ ना बनाएं योजना। जी बिल्कुल, बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं? कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं अजय जी? जी हमारे पास अब है फिल्में बेटा, बेताब, चेन्नई एक्सप्रेस, चलते चलते और हम दिल दे चुके सनम। करण अर्जुन,
1: करण अर्जुन का सुना दे।
0: कौन सा गीत?
1: बहुत अच्छे गीत है सारे, अगर आपने पसंद का सुना दे।
0: चलिए आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये बंधन बिल्कुल ऐसे ही बंधा रहे और प्यार ऐसे ही फैलता रहे, पनपता रहे। आकाशवाणी के साथ हमारे सभी श्रोताओं का
1: धन्यवाद।
0: इसी कामना के साथ ये गीत आपके धर्मशाला भेज रहे हैं। कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: राम प्रसाद बोल रहा हूँ, पालमपुर नगरी से।
0: क्या बात है, आज कांगड़ा वाले बड़े एक्टिव हो रखे हैं। राम प्रसाद जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया जी,
0: अच्छा, क्या करते हैं?
1: दुकान करता हूँ।
0: अच्छा जी, चलिए, किस चीज़ का काम है आपका?
1: मिठाई का।
0: क्या बात है, चलिए, फिर तो मिठास काफ़ी बांटते हैं आप लोगों में।
1: जी,
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको?
1: चेन्नई का मैडम जी,
0: चेन्नई एक्सप्रेस का कौन सा गीत?
1: कोई भी हो।
0: ओके, तो फिर हम आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि और अरिजीत की आवाज़ों में कश्मीर तू।
1: ठीक है
0: कश्मीर
1: सर,
0: से
1: ओके,
0: कन्याकुमारी तक की सैर कराते हैं आपको इस गीत के जरिए।
1: ठीक है, ओके।
0: कॉल करने के लिए शुक्रिया।

0: हेलो हमीरपुर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम हमीरपुर से आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे अगले श्रोता बिल्कुल फोन कॉल्स पर है। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मधु मैडम जी।
0: गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं?
1: विनोद कुमार बोल रहा था, सोलह कांगड़ा।
0: विनोद कुमार जी, और बताएं कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैडम जी, तुम्हारा सुना।
0: मैं, मौसम कैसा है आपके?
1: बारिश हो रही है
0: कांगड़ा में। अच्छा,
1: बारिश लगी फिर से हुआ।
0: क्या करना चाहिए बारिश में, क्या नहीं करना चाहिए?
1: अरे तो बेटा वो उधर रख दे दूध ना।
0: अच्छा, दूध आया आपके घर पे?
1: दूध बार। अच्छा, बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा
0: जी।
1: मैडम जी, बरसात मतलब अपना ख्याल रखना चाहिए। मतलब जाना चाहिए, खल्ल नाल से दूर रहना चाहिए। मतलब
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
1: जिन्होंने मैं पशु पाले वो मतलब हाथ में डंडा और बड़े बूट मतलब डाल के जाए खेतों में घास।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, ये संदेश हमारे सभी दोस्तों तक पहुंच चुका है। बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको?
1: बेताब है।
0: हाँ जी,
1: बेताब।
0: हाँ जी, बेताब का कौन सा गीत?
1: मैडम शायद गाना ना, हम
0: जवा होंगे जी। हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है ये। और बताएं कि कौन है जिम्मेदार ये जो बदलता मौसम है इसके लिए, और क्या

0: हम कदम उठा सकते हैं? विनोद जी कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैडम हम ये निशान जिम्मेवार
0: छेड़छाड़ कर, तो फिर सुधरने की हमें जरूरत है, कैसे करके हम सुधार सकते हैं खुद को?
1: खुद छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए ना, मतलब जैसे मतलब बिना मतलब पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, जंगलों में आग नहीं लगानी चाहिए,
0: बिल्कुल
1: ध्यान रखना चाहिए।
0: चलिए बहुत बढ़िया बात।
1: ऐसे बरसात चली हुई है तो कोड़ा कड़ कड़।
0: हम वन महोत्सव भी मना रहे हैं 1 से 7 जुलाई तक, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं,
1: पेड़ लगाएं,
0: है ना?
1: हाँ जी।
0: चलिए कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल गीत आपके कांगड़ा भेज रहे हैं सुलह में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: ओके जी।

0: हेलो एफएम, हेलो, नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं रवि बोल रहा हूँ मैम, कांगू से।
0: कहाँ से?
1: कांगू से मैम, कांगू से।
0: अच्छा, कांगू से। और रवि जी क्या करते हैं?
1: बस बढ़िया मैम, बढ़िया। उसमें
0: ठीक ठाक हैं, घर परिवार सब बढ़िया?
1: हाँ जी मैम, हाँ जी, आप सब ठीक है मैम।
0: चलिए बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको?
1: हाँ जी,
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं?
1: कौन से फिल्म के गाने मैम, एक बार बता रहा हूँ
0: जी। हमारे पास अब बची है बेटा, चलते चलते और हम दिल दे चुके सनम।
1: अच्छा, बेटा फिल्म को सुनाओ।
0: कौन सा गीत?
1: बेटा कोई भी सुनाओ दादा। हेलो,
0: चलिए आपको सुनवा रहे हैं ये खूबसूरत सा गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा पॉडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।

0: इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। सुबह के 10 बजे हैं, अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका एम्स रायपुर में लंबे समय से इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह करीब 3:15 पर अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की इस लोक कला शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को

0: ने कनाडा को हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को चार विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा की इस वर्ष काफी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुई है। यात्रा के पहले दो दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच वार्षिक यात्रा के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,131 श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि 2,590 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालतल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लघु वार्ता, प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम। आज का विषय है तकनीकी शिक्षा से कौशल उन्नयन।

प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना है। और इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जाता है। सीखो और कमाओ, जी हाँ, इसके मुख्य प्रावधान अल्पसंख्यक युवाओं को आधुनिक एवं पारंपरिक व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। उस्ताद योजना पारंपरिक कला, शिल्प और हस्तकला से जुड़े लोगों के कौशल को उन्नत बनाकर उन्हें आधुनिक बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। और तकनीकी संस्थानों का विस्तार, अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्रों में आईटीआई और अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। प्रधानमंत्री केवीवाई और स्किल इंडिया से इसका जुड़ाव बहुत गहरा है, क्योंकि युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण देकर प्रमाणन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि युवाओं की स्किल्स पर काम हो सके। और रियासती ऋण सुविधा भी इसमें दी जाती है। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रमों के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत सीखो और कमाओ, उस्ताद, नई मंजिल तथा पीएम विकास जैसी योजनाओं के माध्यम से आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रकार के कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्रों में नए आईटीआई स्थापित किए जा रहे हैं तथा मौजूदा संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार से जोड़ने और स्वरोजगार के लिए रियासती ऋण उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है। इस प्रकार ये कार्यक्रम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर राष्ट्र निर्माण में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। आपको बता दें दोस्तों, सीखो और कमाओ योजना का जो उद्देश्य है वो 14 से 35 वर्ष के युवाओं की रोजगार क्षमता

को बढ़ाना है, जबकि उस्ताद के माध्यम से पारंपरिक कला और शिल्प से जुड़े कारीगरों को प्रशिक्षण, डिज़ाइन और बाजार से जोड़ने का कार्य किया जाता है। वहीं यदि हम बात करें प्रधानमंत्री विकास योजना, कौशल विकास, उद्यमिता और आजीविका के अवसरों पर ये योजना विशेष बल देती है और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुत से क्षेत्रों में आईटीआई और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार का प्रावधान कर सकते हैं। तो इस तरीके से तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास ही वो माध्यम है दोस्तों, जो युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे सकता है और इस दिशा में प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देकर इसके माध्यम से रोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार किया जा रहा है। ये कार्यक्रम केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की भावना भी विकसित करते हैं। यदि कोई युवा प्रशिक्षण के बाद अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से उसे रियायती दरों पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। इससे स्वरोजगार के नए अवसर खुलते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं जो पुराने संस्थानों का आधुनिकीकरण के साथ साथ युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा देने में भी सक्षम हैं। अभी आप सुन रहे थे लघुवार्ता प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा से कौशल उन्नयन। ये था आज की लघुवार्ता का विषय। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 MHz पर। आपको बता दें दोस्तों, अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे देशभक्ति के फिल्मी गीत और 10:45 पर लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम लोक रंग। 11 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे और 11:05 से आप सुनेंगे हमारी केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। दोपहर 12 बजे तक 12 बजे बच्चों के लिए प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम बाल मंडल। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम प्रतिदिन प्रसारित किया जाता है, हमारे सैनिकों को समर्पित। 12:30 पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और दिन के 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। जुड़े रहिए आकाशवाणी हमीरपुर के साथ आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 MHz पर।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बिल्कुल, हम लेकर हाजिर हो चुके हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर कार्यक्रम देशभक्ति फिल्मी गीत।

देश प्रेम से ओतप्रोत ये गीत अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो चलिए करते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत इस देशभक्ति गीत के साथ।

0: इंडिया इन।
1: आप सुन रहे हैं देश भक्ति फिल्मी गीत आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: ऐसे लगा हम खेल ही नहीं,
1: पहले ही कंधे घेर दोगे फिर कैसे लड़ो।
2: ग्रिप छुपा
3: This pass is entered the stadium. Except lords.
4: If and when India reaches.

0: देश भक्ति की फिल्म गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8।
1: कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की

एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल कारगिल से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, देश भक्ति गीत आप सभी के रेडियो सेट्स पर। पहले आप सुन रहे थे आंखें फिल्म से देशभक्ति गीत।

0: इसी के साथ अब देशभक्ति का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आपने ट्यून किया एफएम हमीरपुर, आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:45 हो गए हैं। अब आप सुनेंगे पहाड़ी गीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

लोक रंग कार्यक्रम सुनने आले आहां दे सारे श्रोतियां जो राम राम जी कने बहुत सारा स्वागत तुहांदा इस कार्यक्रम च। जी हाँ, आहां दा प्यारा जिहा हिमाचल प्रदेश और इथारी मिठी जी बोली कने आहां दी सौंदी सौंदी मिट्टिया दी खुशबू, यही तो है हिमाचलियां दी पछाण। और जो हिमाचली है ना, सह मना दे दिला दे बड़े ही भोले भाले हुंदे, है ना। जिथे भी जांदे सारियां जो अपना बनाई लैंदे, तां इह आहां दा हिमाचल प्यारा जिहा कने उस ते भी प्यारे प्यारे इत्थां दे लोक गीत, मिठे मिठे पहाड़ी गीत। तो चला भी इन्हें गल्लां बातां सौगी शुरू करें अज का कार्यक्रम। कने तुहां जो पहले सबसे पहले सुनाना है प्यारा जिहा गीत, और इस विच क्या भाव आ, क्या संदेश आ, आवा सुनी लैंदे।

0: बाजीवा असा कुसी जो मंदा नी बोलना चंदेरी चाननी चंदे कने कितनी बढ़िया गल गलाई इस गीता विच कने देखा भई बिल्कुल आहां दे जो रिश्ते है वो बहुत ही बहुमूल्य है ना। तो किसी भी रिश्ते जो आहां ऐसी वैसी कोई गल गलाई के कोई कौड़ी जी गल गलाई के कोई खराब गल गलाई के या झूठी मुठ्ठी ते कोई गल अफवाह बनाई के खराब नहीं करना चाहते ये रिश्ते, क्योंकि आहां दा जीवन जे आ सह बिछैड़ा इन्हां रिश्तियां करीने ही इन्हां दी बदौलत है ना। तभे ही बड़ा ही प्यारा जिहा गीत ए था पहाड़िया बोलिए च मिठी जी यहाँ की हिमाचली बोलिए च कने भे बिल्कुल अहाँ भी ये गल जरूर मननी कि अहाँ कुसी जो बुरा नहीं बोलना। ये त्रिलोक गोस्वामी दा गायदा ये लोक गीत अहाँ सुनिया कने इस ते अगे अहाँ अगला गीत तुहां जो सुनाना पर पहले अहाँ कुछ संदेश सुनी लैने।
1: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर
2: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
1: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
1: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नई पहलों के बाद राज्य में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल देर सायं कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में पूर्ण दक्षता व लगन से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग में अलग मार्केटिंग विंग स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन उत्पादों की डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर बिक्री की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। अधिक ब्यौरा इस रिपोर्ट में।
1: हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों की MSP में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। अब प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए गेहूं की खरीद 80 रुपए, मक्की की 50 रुपए तथा कच्ची हल्दी की 150 रुपए प्रति किलोग्राम और पांगी घाटी के जौ की 80 रुपए प्रति किलोग्राम तथा अदरक 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के बाद प्रदेश में दूध उत्पादन तथा सहकारी डेयरी प्रणाली से जुड़ने वाले किसानों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। सरकार ने गाय के दूध का MSP 32 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का MSP 47 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत डेयरी किसानों के अलावा अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में प्रदेश के दूध उत्पादकों को 300 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कृषि विभाग को कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल क्षेत्र को प्राकृतिक खेती पंचायत घोषित करने की सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़ा भंगाल क्षेत्र में उगाई जाने वाली राजमा के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं गोदावरी वर्मा।
0: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र शिक्षक 10 जुलाई तक ऑनलाइन नामांकन भर सकते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा देश भर के पात्र शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन स्व नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने समर्पण, नवाचार व उत्कृष्ट शिक्षण कार्य से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में योगदान दिया है। ऑनलाइन स्व नामांकन पोर्टल 15 जून से खुल चुका है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी सहारा योजना जनजातीय जिला किन्नौर में गंभीर व असाध्य बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत प्रदान कर रही है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में योजना का संचालन स्वास्थ्य विभाग से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
2: जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में किन्नौर में सहारा योजना के 25 सक्रिय लाभार्थी हैं। लाभार्थियों की EKYC प्रक्रिया प्रगति पर है। प्रक्रिया पूरी होते ही पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किन्नौर जैसे जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्र में गंभीर बीमारियों का उपचार कराने में लोगों को आर्थिक और भौगोलिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिला कल्याण अधिकारी ने जिले के पात्र नागरिकों से अपील की कि यदि वे सहारा

0: योजना के लिए पात्र हैं तो वे अपने निकटतम तहसील कल्याण कार्यालय अथवा जिला कल्याण कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादलों के बीच धूप खिली हुई है। जनजातीय जिला किन्नौर में मौसम साफ है, जबकि लाहौल स्पीति में बादल छाए हुए हैं। धर्मशाला में सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 6 व 7 जुलाई को राज्य में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 8 व 9 जुलाई को राज्य में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग में फील्ड में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर दिन के 12 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
3: संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है। आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए वो जो गीत है उसकी एक झलक हम सुन लें।

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नवरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे
0: जी,
1: कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोताओ, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मन पसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर, मांगने से कब मदद मिलती अरे।

भिक्षुक अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पाँव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहाँ पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना की हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है। इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है।

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ।

0: तुम क्षमा मैं भूल हूँ, एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए
0: जी,
1: तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर
0: हाँ।
1: बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार, और
0: हाँ।
1: इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है असल में, फिल्मकार।
0: जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात
1: शायद
0: की है।
1: इसीलिए फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी। एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा, शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की,
1: जी
0: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशोरी लाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था, और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी,
0: जी
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया, बाद में डून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे, और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी
0: जी
1: फिल्म के
0: जी
1: लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था।
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को, और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था, और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
1: जी 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालया फिल्म्स की स्थापना की, और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई, और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत, और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है,
1: वही जो लता जी के स्वर में है।
0: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
1: चलिए

0: हकीकत का ये गीत हमने सुना, हकीकत हीर रांझा हंसते जख्म हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में बनाने वाले चेतन आनंद साहब।
1: और चेतन आनंद साहब के बारे में एक और खास बात मनीषा जी आपको बताएं, श्रोताओं जान लीजिए, मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले निर्देशक थे चेतन आनंद, और वो फिल्म थी आखिरी खत। हालांकि राजेश खन्ना साहब की पहली रिलीज्ड फिल्म थी राज।
0: अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को उन्होंने ढूंढा था एक एक्टिंग कंपटीशन के दौरान, और इस तरह से हमारे सामने अपने जमाने के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना आए। श्रोता, हम आपसे इतनी बात कर रहे हैं चेतन आनंद साहब की, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, और यकीन मानिए उस आवाज़ को सुनकर हम सिहर से जाते हैं, क्योंकि इतने महान फिल्मकार की आवाज़ हमारे पास है। आइए हमारे साथ आप भी सुनिए चेतन आनंद जी द्वारा प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
2: फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान में कश्मीर और लद्दाख की वादियों में कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद भी दी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक जाना पड़ा, और जिन भाइयों ने मेरी मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर सका, और न ही उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने का कोई मौका मिला। आज अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूंगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक दो फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। आप में से बहुत से भाई इस वक्त 2,000 मील तक फैली हुई हिमालय की सरहदों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबाओं की याद अक्सर आती होगी।

हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान की।
1: कर चले हम फिदा जान तन।

0: हूँ। जय हिंद।
1: जयंत जी,
2: जी
1: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे, उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतनानंद साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
2: अच्छा।
1: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतनानंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या
2: जी,
1: किया
2: जी।
1: था, क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
3: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो, और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने, यू नो। कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आया आगे, तो धड़ रोड क्रॉस कर देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो एक्सेप्ट करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉट है फिल्म में।
4: फिर उन्होंने ट्रैक पर भी गया,
3: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीज़ें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान्ड है, वो छोटी छोटी चीज़ें प्लान्ड है। बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है, और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीज़ें उसने बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है। स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो।

0: इस रिकॉर्डिंग को सुन करके बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी, और इसी अनुभूति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे।
1: बहुत लोकप्रिय गायक, जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था, और चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज़ सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओं, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत

0: अहमद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल
1: जी
0: की बात है ये। और एक झलक हम रथ यात्रा के गीत की सुनते हैं।
1: अवश्य।

0: मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफ़ी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फ़ैन थे। और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे, और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाना गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना, और वो भी पहले ही ब्रेक में, ये
0: जी,
1: बहुत किस्मत वालों की बात होती है।
0: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था,
1: जी
0: बहुत ही हिट था उन दिनों। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे,
1: जी हाँ
0: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि वो रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे, और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है।
1: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज, यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है श्रोताओं। जब वे विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: मोहम्मद अजीज साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, मुझे बुलाने का।
0: आपको कैसा लग रहा है विविध भारती में आकर?
1: विविध भारती के साथ तो बचपन जुड़ा है हमारा। बचपन से इतने प्रोग्राम, जब तो रेडियो ही थे, विविध भारती ही था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में रेडियो सुनता था और आज विविध भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: आपका बचपन कैसा था?
1: मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा, और बड़ा ही मजहबी किस्म का ख़ानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप। सादा लोग बिल्कुल, और ये ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं।
0: जी
1: और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं। क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी भी किसी स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता था तो मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था,
0: जी
1: क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा। जो आम तौर से लोग बहुत ज़्यादा सीख कर गाते हैं, उस
0: जी
1: तरह मुझे एक गॉड गिफ्ट था कि मुझे इतनी समझ थी कि कहाँ कैसे गाने को शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है,
0: जी
1: उसकी हरकत क्या होनी चाहिए, क्या होना। इस तरह बचपन से मुझे काफ़ी सेंस, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं एक ना एक दिन कुछ कर पाऊँगा
0: कामयाब होंगे।
1: जी। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर BCOM तक पढ़ाई की, खींचा तानी करके।
0: अच्छा
1: हाँ, घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैं इधर उधर गाता था और उनको, मेरे वालदेन को जब पता चलता था कि अरे उसने फला जगह गाया है, कमाल हो गया है, हो गया, तो जाहिर है उनको तो खुशी होती है, लेकिन वो करियर कुछ नज़र नहीं आता ना। और वैसे भी बॉम्बे आने से पहले तक तो किसी भी दूसरे शहर में कोई स्कोप तो होता नहीं। तो मैंने फिर भी काफ़ी साल तक स्टेज प्रोग्राम किए, बाकायदा अपना ग्रुप भी बनाया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी शुरू से। एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे भाई बहन और वालदेन की जिम्मेदारी, ये सब थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि आप कुछ भी हो, वक्त बर्बाद नहीं करना है।
0: मुंबई चले आना,
1: हाँ,
0: सर मुंबई
1: बॉम्बे
0: चले
1: आने
0: आना।
1: के बाद फिर 2 साल स्ट्रगल रहा, और 84 में मुझे कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने मिलने लगे। कुछ 8-10 गाने गाए होंगे कि फिर अचानक एक ब्लास्ट हुआ। यानी मुझे अचानक सुबह सुबह किसी ने आके कहा, अभी चलो तुमको अन्नू मलिक के यहाँ जाना।
0: किसने कहा था?
1: एक लड़का है, आज भी मेरी दोस्ती है उससे, पप्पू कश्मीरी है, उनका म्यूजिशियन था वो। तो मुझे सुबह सुबह उठा के ले गया
0: अच्छा
1: रिहर्सल करवाने के लिए कि 3 बजे से आपकी रिकॉर्डिंग है फिल्म मर्द के लिए, अमिताभ बच्चन।
0: अच्छा
1: तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरे ये तो कमाल ही हो गया। और मुझे कहा गया कि भाई आप को इस तरह गाना है कि बस गाना रह जाए, नहीं तो ये गाना डब हो जाएगा। खूब रिहर्सल वर्सल करके मैंने 3 बजे से गाना गाया, तो रिस्पांस इतना अच्छा था, क्योंकि उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग में एक बात अच्छी थी कि वही म्यूजिशियंस दूसरी जगह जाते थे और
0: जिक्र
1: जाकर,
0: करते
1: हाँ, कि
0: होंगे।
1: अरे फलां एक नया लड़का है, उसने कमाल गाया। तो अभी जैसे अन्नू मलिक जी के यहाँ से बजा के यही म्यूजिशियन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचम दा के यहाँ, कल्याण जी
0: जी
1: भाई के यहाँ। तो इस तरह बात फैल गई। यानी ये फिल्म, ये गाने रिलीज होने से पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से सब जगह गाने लगा।
0: अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब पर एक गाना था, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया,
1: नहीं,
0: तो कैसे मिला था ये
1: इसका तो
0: मौका?
1: कमाल है। आपको मैं एक पहले से बताऊं एक बात, कि मैं बचपन से ही मोहम्मद रफ़ी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूं और आगे भी रहूंगा।
0: रहेंगे।
1: वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानता हूं। क्योंकि जाहिर है कि बचपन से जिनके गाने गाकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं। आज भी जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाने के बाद भी कभी कभार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूँ अकेले बैठ के, तो आंसू आ जाते हैं। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मीकांत जी के घर,
0: जी जी
1: लक्ष्मी जी थे, प्यारे जी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, डायरेक्टर शशि लाल नायर। कि एक सिचुएशन निकली है कि 31 जुलाई है, मोहम्मद रफ़ी साहब की बरसी है, और उसमें अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होना है
0: अच्छा
1: कि रफ़ी साहब की याद में कोई गाना गा रहे हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी बनी। अब सब लोग बात कर रहे हैं कि इस गाने को गाएगा कौन। तो ये मेरी, देखिए, खुशनसीबी कहिए या रफ़ी साहब की चाहत थी, क्या थी, कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा, मुझे मुन्ना कहते हैं ना,
0: जी
1: प्रिट नेम है बट
0: अच्छा
1: मोहम्मद अजीज़ मेरा नाम है। तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत
0: बहुत
1: याद
0: याद
1: आया,
0: आया।
1: मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग,
0: जी
1: और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है। तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर, इवन म्यूजिशियन जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं क्योंकि
0: जी
1: रोज़ का काम है उनका,
0: जी जी
1: वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। एक माहौल ही एक तो सन्नाटा छा गया वो।
2: न फनकार तुझसा

0: अमिताभ बच्चन साहब का क्या रिएक्शन होता जब आप गाते थे तो?
1: बहुत इन्वॉल्व गाना जब बनता था ना, तो जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ, सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे
0: जी। कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया हो, अच्छा
1: नहीं,
0: लगा?
1: अमित जी बहुत कम बात करते हैं
0: जी
1: बस, हल्की हल्की स्माइल देते हैं बस, उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या।
0: जी
1: और हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते हैं लोगों को,
0: जी
1: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे। बहुत सारी बातें हैं मिला के अमिताभ बच्चन है।
0: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं?
1: आपको बताऊं, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने, और मैंने नौशाद साहब, शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए,
0: जी
1: और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया।
0: जी
1: कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ
0: क्या
1: पूरा हो
0: बात
1: गया। जी बिल्कुल।
0: है। अच्छा मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है, वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था?
1: मैं एक दफा गया गया था बिहार, तो वहाँ पे कोई एसडी बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था,
0: जी
1: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये बात है 1976 की।
0: अच्छा
1: तो वहाँ तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने
0: जी
1: किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था। और वहाँ मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नए नए लड़ जाए हैं ये सब,
0: जी जी
1: बिहार का सिचुएशन देखकर
0: जी
1: पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा। ये कब, जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला, देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो।
0: अच्छा
1: वहाँ गया
0: जी
1: मैं 76 में, मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर, और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अधनायक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया। नौशाद साहब जैसे संगीतकार को किसी जमाने में देखना भी हमारे लिए एक सपना था। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गवाए, फिल्म आवाज़ दे कहाँ है, और गाने के बोले रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले।

0: अब आपके नॉन फिल्मी एल्बम्स के बारे में बताइए।
1: एक बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब अनु मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था। वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे, एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टी सीरीज से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा। इस तरह बहुत सारे एल्बम्स निकले हैं, एल्बम 60-70 हैं कव्वालियों के,
0: जी,
1: नात मनकबत जो होते हैं ना उसके। मैंने इतने टाइप के गाने गाए आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया
0: जी
1: और लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितनी मेल वॉइस है, जय हनुमान एक सीरियल आई थी
0: जी हाँ
1: संजय खान साहब
0: हाँ
1: की,
0: हाँ
1: उसमें जितनी भी मेल वॉइस है वो सब मेरी है, वो
0: अच्छा
1: सारे हनुमान चालीसा सारा। टाइटल भी आपने सुना होगा,
0: हाँ
1: मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है
0: जी
1: ना, वो सब मेरे गाए हुए हैं। इतने मुश्किल पूरा चौपाइयाँ दोहे जो जो थे वो सारे वो सब मैंने गाया।
0: जी
1: मैं इसके लिए रविंद्र जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण ये सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म हेना में भी मुझे गवाया।
0: आपके गानों की लंबी फेहरिस्त है, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनवाए, कौन कौन से नहीं।
1: उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है, और एक एक फिल्म में तीन तीन चार चार गाने गाए हैं।
0: अच्छा
1: आज जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर्स होते हैं,
0: जी
1: अभी जैसे 10 बहाने करके ले गया दिल, तो इसमें चार सिंगर हैं। तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं चार चार पांच पांच गाने एक फिल्म में गाता था।
0: जी
1: तो आप सोचिए फिल्मों का गाना में तो मेरा 2-2.5 हज़ार है, और 4 हज़ार के करीब मेरे ओड़िया गाने हैं, सिर्फ ओड़िया गाने,
0: जी
1: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10 हज़ार के ऊपर गाने हैं मेरे,
0: कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए?
1: 17 या 18।
0: चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त?
1: खुदा गवाह का गाना सुनाइए।

0: मैं वापस आऊंगा, खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब की रिकॉर्डिंग में हमने सुना।
1: अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है, क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं और आपके साथ उतने ही जज्बाती भी हो जाते
0: मगर मनीषा जी,
1: हैं।
0: अगले हफ्ते हम जरूर वापस
1: वापस
0: आएंगे
1: आएंगे
0: विविधा का अगला अंक लेकर के।
1: जी हाँ, तो इस वक्त

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। थोड़ी देर में दिल्ली से समाचार रिले करेंगे।
1: अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल मंडल।

नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल। नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल।

जी नन्हे मुन्ने बच्चों, आपकी रेडियो दीदी, जी हाँ, पूजा शर्मा हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है बाल मंडल। और बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम में। हमें पूरा यकीन है कि आज संडे का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, और आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है अपने चहेते कार्यक्रम का। जी हाँ, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस कार्यक्रम में आप तक हम पहुंचाते हैं ढेरों जानकारियां, मज़ेदार बातें, कहानियां, पहेलियां और बहुत सारा मनोरंजन। जी हाँ, तो बच्चों बताइए कैसे हैं आप। बिल्कुल, हम जानते हैं आप कैसे हैं, लेकिन फिर भी देखिए, छुट्टियां पड़ने वाली हैं। कुछ ही दिनों में आप छुट्टियों का आनंद उठाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, और दोस्तों बरसातें तो आ ही गई हैं, रोज़ाना बारिश हो ही जा रही है ना। और हमारे दोस्तों ने तो इंद्रधनुष भी देख लिए होंगे। ऐसा कोई दोस्त जिसने इंद्रधनुष देखा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भाई, आप भी इंद्रधनुष देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर बरसात के मौसम में इंद्रधनुष जो है वो दिखता है आसमान में, सात रंग का, सुंदर सा, प्यारा सा। एक तरफ देखें तो सूरज की हल्की हल्की किरणें, रोशनी, और दूसरी तरफ देखें तो बादलों से घिरा आसमान, और बीच में, जी बीच में, रंगीन सा इंद्रधनुष। कितना प्यारा नज़ारा लगता है जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। और आज हम आपसे यही बात साझा करने वाले हैं कि इंद्रधनुष है क्या, कैसे बनता है, कैसे दिखता है ना मज़ेदार बात। तो हैं आप तैयार? बिल्कुल। तो भाई लीजिए, आपकी जानकारी को हम बढ़ाते हैं और आपके साथ ये रोचक बात साझा करते हैं। दोस्तों, इंद्रधनुष यानी रेनबो, सूर्य का प्रकाश हमें सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, लेकिन असल में ये सात रंगों से मिलकर बनता है दोस्तों, जो हमें प्रिज्म से देखने पर ही दिखाई देता है। ये तो आपको पता लग गया कि अब आते हैं इंद्रधनुष के बनने पर। जब बारिश के मौसम में सूर्य का प्रकाश एक साथ लाखों बूंदों से अपवर्तित और परावर्तित यानी रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन जब होती है, तो पानी की बूंदें जो है वो प्रिज्म का काम करती हैं, जिसकी वजह से हमें वो सूर्य के प्रकाश के सातों रंग खुले आसमान में दिखाई देने लगते हैं। इसी को रेनबो यानी इंद्रधनुष कहते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष के रंग का जो क्रम है यानी जो सीक्वेंस है वो इस तरह से है। आप सभी जानते हैं कि सात रंगों से मिलकर इंद्रधनुष बनता है, लेकिन ये सात रंग किस सीक्वेंस में है, आइए जानें। दोस्तों, सबसे पहले होता है लाल रंग, उसके बाद ऑरेंज यानी नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, और फिर इंडिगो। इंडिगो हल्का सा फिरोजी रंग होता है, और फिर अंत में होता है बैंगनी। जी हाँ, इन रंगों को आप एक आसान तरीके से याद भी रख सकते हैं। जी हाँ, फिर से रिपीट करते हैं, आपके ये जो सात रंग हैं आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। सबसे पहले लाल, फिर ऑरेंज यानी नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर इंडिगो, और फिर बैंगनी। इन रंगों को हम

हम बोल सकते हैं रॉयग्विक, यस रॉयग्विक करके. अब यानी कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और व्रिंचल. जी दोस्तों, तो ये बहुत खूबसूरत रंग लगते हैं. और इंद्रधनुष के बारे में आपके साथ रोचक तथ्य हम साझा करेंगे. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंद्रधनुष एक पूरा सर्कल होता है? लेकिन हमें ये सर्कल आधा ही नजर आता है. और जब कोई दो इंसान एक ही इंद्रधनुष को देख रहे होते हैं तो वो उसको एक जैसा नहीं देख रहे होते. क्यों? देखिए, आपके बगल में खड़ा व्यक्ति आपसे अलग स्थान पर खड़ा होता है तो उसे इंद्रधनुष भी अलग ही दिखाई देगा. हालांकि आप दोनों को लग सकता है कि आप एक ही इंद्रधनुष देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप दोनों अलग अलग इंद्रधनुष भी देख सकते हैं. बारिश की हर बूंदें अपना अलग इंद्रधनुष ही बनाती हैं दोस्तों, इसलिए वो व्यक्ति जहाँ खड़ा होगा उसे वहीं का ही इंद्रधनुष दिखाई देगा. दोस्तों, जब सूर्य ऊंचाई पर होगा तो हमें इंद्रधनुष नीचे दिखाई देगा, और जब सूर्य नीचे होगा तो हमें इंद्रधनुष ऊंचाई पर दिखाई देगा. यानी इंद्रधनुष सूरज की जो हमारी डायरेक्शन है उससे बिल्कुल अपोजिट यानी विपरीत दिशा में ही दिखता है. अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए कि आप इंद्रधनुष को कभी छू नहीं सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रकाश ही है. दोस्तों, अब आप इंद्रधनुष को केवल तभी देख सकते हैं जब सूर्य आपकी पीठ पर हो. यानी अगर जो सन है वो आपके बैक साइड है तो आप अपने सामने की दिशा में इंद्रधनुष को देख सकते हो. दोस्तों, ये भी संभव है कभी कभी एक साथ दो, तीन या चार इंद्रधनुष भी देखने को मिलते हैं. ऐसा तब होता है जब सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंदों के अंदर एक से ज़्यादा बार टकराता है. अगर एक साथ दो इंद्रधनुष बनते हैं तो दूसरे इंद्रधनुष का रंग प्राथमिक इंद्रधनुष के बिल्कुल विपरीत क्रम में होगा, यानी कि जो क्रम हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया उसके अपोजिट उसके कलर दिखेंगे. देखिए दोस्तों, है ना मजेदार बातें. तो आपको इसके बारे में और इंटरेस्टिंग बातें बताएं तो देखिए, सौर मंडल में पृथ्वी और शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन दो ऐसी जगह हैं जहां इंद्रधनुष बनना संभव है. टाइटन पर तब इंद्रधनुष बनता है जब सूर्य की रोशनी तरल मीथेन की बूंदों से रिफ्लेक्ट करती है. टाइटन पर इंद्रधनुष का कोण 42 डिग्री की बजाय लगभग 49 डिग्री का होता है. तो दोस्तों, है कमाल का ये इंद्रधनुष. ज़रूर आप घरों से बाहर निकलिए, छुट्टियों का मज़ा भी लेना जब छुट्टियां पड़ जाएंगी, और आसमान में भी देखते रहना, न जाने कब आपको कौन सा इंद्रधनुष नज़र आ जाए. और बारिश का मौसम है और हम आपको बारिश का गाना ना सुनवाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, बरसात के दिनों में पता ही नहीं चलता कि कब बादल गरजे और कब झमाझम बरसे. इस गीत की तरह आइए सुनते हैं.

जी, नन्हे मुन्हे दोस्तों तो ज़रूर मज़ा लीजिएगा बरसात के दिनों का, और अपना खूब ख्याल रखिएगा क्योंकि ज़्यादा भीगने से आप कहीं बीमार ना हों। और भई हाँ, हल्की फुल्की बारिश का मज़ा तो ले ही लिया जा सकता है, और बड़ों का कहना मानेंगे, अकेले ज़्यादा बाहर नहीं घूमेंगे बारिश में। तो जी, आपको बता दें, आप बने हैं देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर के साथ, सुन रहे हैं अपना चहिता कार्यक्रम बाल मंडल। अब बढ़ते हैं आगे, और एक प्यारी सी छोटी सी कहानी आपके लिए हम लेकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कहानी महज कहानी थोड़ी होती है, ये तो हमें कुछ सिखा भी जाती है, कुछ पढ़ा भी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी ने हमें क्या सिखाया। तो ध्यान से सुनिएगा। एक शहर था बहुत बड़ा, और वहाँ पर एक हीरे का

व्यापारी रहता था, जी हाँ, जो डायमंड का बिजनेस करता था। अब पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा था और वो बहुत दयालु भी था। लोगों को अनाज बांटता था, कपड़े बांटता था और हमेशा औरों की मदद भी कर दिया करता था। और उसका एक बेटा भी था। अब व्यापारी उसको सब कुछ देता जो उसको जीवन में कभी नहीं मिला। वो चाहता कि मेरा बेटा भी जीवन की सच्ची दौलत क्या है ये समझे। वो हमेशा यही कोशिश करता रहता था। उसे लगता था कि जो मुझे कमी रह गई मेरे बचपन में, जो मुझे चीज़ें नहीं मिली, वो सारी चीज़ें मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए। लेकिन बशर्ते उसको ये भी पता हो कि ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी नहीं मिलती, मेहनत से कमाई हुई होती हैं। एक दिन हीरे के व्यापारी ने अपने बेटे के साथ अपने पुराने गांव जाने की सोची। ये बात जब उसने बेटे के सामने रखी, वो भी तुरंत राजी हो गया। उसको भी गांव का जीवन कैसा होता है करीब से देखने का मौका मिलने वाला था। दोनों ने अपना सामान पकड़ा और गाड़ी में बैठकर गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचकर व्यापारी के बेटे ने सबसे जान पहचान की। वो जिनके यहाँ गए थे वो लोग बहुत ही गरीब थे। वो अपने बराबरी के लड़कों में खूब खेला, खूब मस्ती की, उनके साथ नदी में डुबकियां भी लगाई, पेड़ से आम भी तोड़े, खाए, गाय का दूध अपने हाथों से निकाला और पिया, खेतों में इधर उधर भागा, तितलियां पकड़ी, खेतों से सब्जी तोड़कर बनाने में, खाने में और भी मज़ा आया। और जब मिलकर सभी खाना बनाते थे या घर का छोटा मोटा काम करते थे तो उसको बहुत ही आनंद आता था। रात को खुले आसमान के नीचे वो कभी नहीं सोया था, और जब वो खुले आसमान के नीचे सोता तो यूं लगता कि बस मेरी दुनिया तो यही है। इसी बहाने ये इच्छा भी उसकी पूरी हो गई। कहाँ हमारा इतना बड़ा घर और कहाँ हमारा वो बिस्तर जहाँ हमें रोज़ सोना पड़ता है। और वाह क्या मज़ा है अपने दोस्तों के साथ खुले आसमान का नज़ारा लेते हुए, तारों की गिनती करते हुए सोना, सपने देखना। दूसरे दिन जब घर वापस जाने का वक्त आया तब उसका मन बहुत ही भारी हो गया था। उसके पैर मुड़ नहीं रहे थे, जाने का मन ज़रा नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ना था। गाड़ी में बैठकर उसने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा। गाड़ी छुक छुक कर चल पड़ी। कुछ दूर जाकर व्यापारी ने अपने लड़के की तरफ देखा तो क्या देखा, वो थोड़ा सा घुट रहा था, थोड़ा सा रो रहा था। वही बेटा जो जीवन में कभी नहीं रोया। अब व्यापारी गाड़ी के एक पेड़ के नीचे जो है वो रुकती है थोड़ी देर के लिए। वो उतरे वहाँ पर और व्यापारी ने पूछा, अरे क्या हुआ, तुम उदास हो? लड़के ने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, हमारे घर में एक कुत्ता है लेकिन इनके पास तीन हैं। हम बड़े से घर में रहते हैं, मजबूत दीवारों में हम रहते हैं, लेकिन उन दीवारों से हमें डर नहीं लगता। लेकिन यहाँ जब सब लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं, छोटे से घर में रहते हैं, तो वो बहुत खुश हैं, एक दूसरे से ढेरों बातें करते हैं। हम खाना खरीदते हैं लेकिन यहाँ खाना उगाया जाता है पिताजी। हमारे पास घर में रंगीन रोशनी है, हर घर में लाइट है, लेकिन यहाँ इनके पास सितारों से भरा हुआ पूरा आसमान है। हम छोटे से बाथरूम में नहाते हैं पिताजी, लेकिन ये यहाँ ताज़े पानी के झरने में मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं, गाते हुए बजाते हुए बस बहते जाते हैं। वो संगीत अब मेरे कानों में गूंज रहा है पिताजी, वो सारा नज़ारा मेरी आंखों के सामने झूम रहा है पिताजी। व्यापारी ने अपने लड़के को देखा, उसने भी अपने पिता को देखा और कहा, सच्ची दौलत तो उनके पास है पिताजी, हमारे पास तो इतने हीरे हैं, हमारे पास तो इतना सारा धन है, लेकिन कुछ कमी है। ये लोग इतने गरीब हैं, लेकिन गरीब होते हुए भी यूँ लग रहा है कि ये तो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं। ये सारी बातें सुनकर व्यापारी के आँखों में भी आंसू आ गए। वो खुद को रोक नहीं पाया, उसने अपने

लड़के को गले से लगाया। बस दोनों इसके आगे कुछ नहीं बोल पाए, कुछ नहीं बोल सके, बस दोनों एक दूसरे के साथ लिपट गए थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये जो आंसू इस बच्चे ने बहाए और ये जो आंसू जब गले लगाया बच्चे के पिताजी ने बच्चे को और पिता की आंखों में भी आंसू आए, ये क्या कोई दुख के आंसू थे? दोस्तों नहीं, ये सुख के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। ये आंसू उन लोगों की आंखों में आते हैं जो कुछ अंदर से महसूस करते हैं, जो एक छोटे से बच्चे ने महसूस किया। जी हाँ दोस्तों, यही असली दौलत है, जो पैसा है, जो हम कमाते हैं, जिसके लिए हम रोज़ाना भागते हैं। आपके मम्मी पापा इतनी मेहनत करते हैं, दादा दादी ने भी कितना कुछ आपके लिए सींच कर रखा है, वो आपकी ज़रूरत के लिए है दोस्तों। तो उसका यूं ही बेफजूली नहीं करनी है, उसकी बहुत कद्र करनी है। और हाँ, जो आपके पास खुला आसमान है, ताज़ी हवा है, ताज़ा पानी है, आपके पास लहराते पेड़ हैं, हवा दे रहे हैं, आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, चहचहाते हुए पंछी आसमान में गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, ये भी तो हमारी दुनिया है। और ये सब कुछ अगर हमारे आसपास है तो भाई हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तो इस दौलत को खूब बनाकर रखिए, खूब सजा कर रखिए, यानी कि अपने पर्यावरण का बहुत बहुत ध्यान रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं, आप बहुत समझदार हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, और आपके शिक्षक भी आपको समझाते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको समझाते हैं कि पर्यावरण आपका सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है, तो इसको कभी नुकसान नहीं पहुँचाना। अगर हम इसकी रक्षा करेंगे तो देखो, ये तो बिना सोचे समझे, बिना मतलब के हमारी रक्षा करता ही तो है। सब कुछ वो हमें देता है जो हमें चाहिए। और हम वन महोत्सव जो है, ये जो हमारा वन सप्ताह हम मना रहे हैं, पर्यावरण को बचा रहे हैं, तो भाई ये सिर्फ एक सप्ताह नहीं होना चाहिए, ये पूरा हमारा जो जीवन है ये पर्यावरण को समर्पित होना चाहिए। क्योंकि ऐसी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं अब हमारे सामने आ रही हैं जो प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही हैं, चाहे फिर वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे फिर वो क्लाइमेट चेंज हो, अतिवृष्टि यानी एक्सेस रेन हो, एक्सेस आप गर्मी देखिए कितना तापमान बढ़ रहा है, या जब सर्दियों के दिन आते हैं, ठंड के दिन आते हैं तो असहनीय ठंड होती है। ये सारा कुछ जो है ये पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो हम छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, छोटे छोटे चीज़ें कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जिनसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो भाई इन्हीं जानकारियों के साथ और इन्हीं बातों के साथ अब समय हुआ है आपको एक प्यारा सा गीत सुनवाने का। तो लीजिए, गुनगुनाइए और मज़ा लीजिए इस गीत का। कार्यक्रम है आपका अपना बाल मंडल और आप ये कार्यक्रम सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ देवभूमि की सुरीली धड़कन, हाँ हाँ क्या, आकाशवाणी हमीरपुर FM 101.8 MHz।

0: नाम है कैलेंडर।
1: क्या है?
0: मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। बॉल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, बॉल मांगो भैया हाथ जरा जोर के। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। बॉल मांगो भैया हाथ जरा जोर के।
2: जी दोस्तों, तो ये प्यारा सा गीत आपने सुना, और नन्हे मुन्ने बच्चों, चलते चलते आपको एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे आपके साथ। ट्रेन के पीछे आपने देखा होगा कि क्रॉस का एक सिंबल बना होता है, जिसको आप एक्स भी पढ़ सकते हो। दोस्तों देखिए, कई बार क्या होता है कि रात के समय में या कोहरे के समय में, कम रोशनी के समय में, ये निशान रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा संकेत बन जाता है। इससे पता चलता है कि कोई भी कोच बीच रास्ते में छूट तो नहीं गया है। अगर किसी स्टेशन या सिग्नल पॉइंट पर आखिरी डिब्बे पर क्रॉस दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब होता है कि ट्रेन अधूरी है। ऐसी स्थिति में तुरंत अलर्ट जारी किया जाता है और संभावित खतरे को रोकने के लिए ट्रेन को रोक दिया जाता है। जी हाँ, आपने अक्सर देखा तो होगा कि इसमें क्रॉस का सिंबल बना है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसा क्यों है? तो भाई, जब भी आप कहीं घूमने जाएं, आप ज़रूर अपने जो ज्ञान है उसको बढ़ाएं, सोचें, और जो अगर आपको जैसे जानकारियां आप हासिल कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, माता पिता हैं, तो नोट ज़रूर करिए और फिर अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। जी, तो इन्हीं सारी बातों के साथ और इन्हीं गीतों के साथ आज का बाल मंडल कार्यक्रम का समय यहीं पर पूरा हो रहा है। आपसे लेते हैं अनुमति, नमस्कार।

0: नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल मंडल। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सैनिकों के लिए कार्यक्रम।

सैनिक भाई बहनों, जय हिंद। आपकी सेवा में हाजिर हैं एक बार फिर कार्यक्रम लेकर सैनिकों के लिए। करिए स्वीकार पूजा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए यह कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

जी हाँ सैनिक भाई बहनों, बिल्कुल। ऐसा दिन कहाँ, ऐसी रात कहाँ, पूरी दुनिया में मेरे भारत जैसी बात कहाँ। आपको बताएं, पूर्व और पश्चिम फिल्म से अभी आपने ये देशभक्ति गीत सुना। लीजिए अब अगला गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है राज फिल्म से। स्वर इस गीत में आप सुनेंगे अलका याग्निक का।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

सैनिक भाई बहनों, आपको बताएं, अभी आपने जो गीत सुना उसमें स्वर थे आशा भोंसले, सोनू निगम व साथियों के। ये गीत लिया गया था मस्त फिल्म से। और अगली धुन जो आप सुन रहे हैं ये ली गई है नायक फिल्म से। आवाज़ें इस गीत में आप सुनेंगे शंकर महादेवन व अलका याग्निक की।

लीजिए सैनिक भाई बहनों, ये है आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। ये है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से टाइटल सॉन्ग। आवाजें अभिजीत और उदित नारायण व साथियों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में जैसा कि हमेशा होता है एक इबारत हम भेजते हैं और उसे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं और उस इबारत को देखकर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या होंगे, कौन से शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जा सकते हैं। तो आज की इबारत, हालांकि आपने में से बहुत से लोगों ने तो इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए हम एक बार बता देते हैं वो इबारत कि कोई फुर्सत के पल ढूंढता है तो किसी को नौकरी की है तलाश, कोई सबसे दूर होकर खुश होता है तो किसी को चाहिए सब आसपास, उम्मीदों आशाओं चाहतों और ज़रूरतों का फैला हुआ है आकाश, कभी यहाँ दुख की बदली छाए तो कभी फैले भोर की उजास, क्या कहता है आपका मन, क्या है मुकम्मल जहाँ किसी के पास। तो ये है आज की इबारत जिनमें से शब्द चुनने हैं आपको और इन शब्दों को चुनकर आपको बताना है कि कौन से गीत शामिल हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वैसे हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं और बता भी दिया है कि कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक गीत जो आपकी और हमारी लिस्ट में बिल्कुल मैच हो रहा है बातों के साथ भी और जज्बात के साथ भी, वो गीत तो कार्यक्रम का पहला गीत ही बनने वाला है। वैसे हमारे साथी कहते हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है, किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यही है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि हम अपनी इन अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती, जो मिलता है वो है अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तानों में ही अक्सर सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती हैं और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं, ऐसा इनका कहना है। एक और साथी कहते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, जो गर्मी में सूरज से निकलती कड़ी धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव ढूंढता है तो ठंड के मौसम में ठंड से राहत पाने के लिए वही सूरज की तलाश करता है। इसलिए कहा गया कि ये जीवन है, जीवन का यही है रंग रूप। बिल्कुल सही बात आप दोनों ने कही। हम लेकिन आपसे ये पता करना चाहते हैं कि भाई क्या वाकई सारी चीज़ें अधूरी अधूरी रहती हैं जीवन में, या कहीं ना कहीं हमारा मन इस तरह से चलता है या इस तरह से कहें कि काम करता है कि उसे हर चीज़ अधूरी लगती है। जो भी चीज़ पूरी हो जाती है उससे आगे क्या, ये सोच जब हमारे मन में होती है तो हमें कई चीज़ें अधूरी लगती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और ये भी बताइए कि आपको किस चीज़ की तलाश है, जो भी तलाश हो सकती है हमें बताइए। और तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। आपको बताना है कि इसमें आवाज किसकी है, क्योंकि हमें तलाश है इस जवाब की।

0: सके रात दिन दिल ढूंढता।
1: ये गीत आप सुन रहे थे मौसम फिल्म के इस गीत में आपने सुना भूपिंदर और लता मंगेशकर की आवाज को, जो कि हमने आपसे पूछा था, सवाल का सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथियों से हम ये भी पूछना चाहेंगे, इस गीत में बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बताया जा रहा है या कहा जाता है जो कि एक ख्वाहिश होती है कई बार, जैसे छत पर पड़े रहकर या सोकर तारे देखना या आसमान में मतलब जाड़ों की धूप सेकना, तो इस तरह की बहुत सी बातों का उल्लेख इस गीत में हमने सुना। तो क्या आपने इसमें से बहुत सारी चीज़ों का अनुभव लिया है या कुछ की उम्मीद या तमन्ना अब भी आपके जीवन में है, ये हमें बताइए। और हमारे साथी ने कहा कि एक मुकम्मल जहां बनाने के लिए लोग अपनी आशाएं, उम्मीदें और चाहतों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई फुर्सत के पल ढूंढता है, कोई नौकरी की तलाश में, कभी दुख तो कभी सुबह की पहली किरण। हमारा भी मन कहता है कि सूरज की भांति अंधेरे को मिटाकर जीवन में रोशनी भर देंगे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन सुख दुख का माया जाल है, एक धागा सुख का तो 100 धागे दुख के होते हैं। उम्मीद और आशा के साथ हर एक को सुख की तलाश रहती है, फिर भी हमें कभी खुशी, कभी गम, कभी धूप, कभी छांव को स्वीकार करना पड़ता है। राजा से लेकर रंग तक संसार में कोई भी पूर्णतया सुखी नहीं होता। फूल खिलते हैं तो मुरझा भी जाते हैं। जीवन में अक्सर गम के साए नजर आते हैं, सह लेता है हर दर्द को जो हंसकर, असल में वही लोग इस जहां में मुस्कुराते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन वाकई हर चीज में सिर्फ दर्द सहने वाला ही इस जीवन में सुखी रहता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास तो लगातार करता है, लेकिन जिस परिस्थिति में है उसमें भी एक संयम रखते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून तो होता ही है। वरना तो हम सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे कि इस गीत में भी है ढूंढने की कोई बात। हमें बताइए किसने लिखा ये गीत और फिल्म में कौन है इस गीत में नायक।
2: डियर सर, सेवा में निवेदन है।

नौकरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज और उन्हीं पर फिल्माया गया है ये गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा है और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं। और हमारे एक साथी कहने की आज की इबारत तो जीवन दर्शन जीने की कला, जरूरतें, दुख सुख, अकेलापन, रंगीन जिंदगी और अपनापन बनाए रखने वाली जीवन शैली को बहुत सुंदर तरह से विश्लेषण किया गया है। कहते ना कि फुर्सत मिले तो पूछ कभी उनका हाल भी, जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर। वाह, क्या बात आपने कही। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम तो हर मौसम में वही करते हैं जो गीत में कहा गया है। मौसम फिल्म के गीत को हमने जब दिल ढूंढता है, फुर्सत के रात दिन वाले गीत पर हमने पूछा था ना कि जो जो कहा गया है उसमें से क्या क्या आप करते हैं, तो हमारे साथी ने ये बात कही है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मानव जीवन ही ऐसा है, कभी संतोष मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं कि इच्छा पूर्ति नहीं होती, कभी हो भी जाती है, लेकिन नवीन इच्छाएं पल्लवित होने लगती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये मुकम्मल जहां बाहर नहीं मिलेगा, जो जमीन मिली है वो, जो आसमां मिला है उसी में थोड़ा सुकून ढूंढना पड़ता है। किसी का दर्द बांट लो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आओ, तो शायद अपना अधूरापन भी पूरा लगने लगे। वहीं हमारे साथी ने कहा कि अभी तो ढूंढना पड़ता है, जब धूप तेज होती है तो बाहर जाकर पेड़ों की छांव ढूंढनी पड़ती है। एक और साथी लिखते हैं कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ये एक चाहत होती है कि कुछ पल सुकून के मिले। एक गीत मुझे बहुत याद आता है, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, दिल चाहता है एक मुट्ठी आसमान, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। इस तरह से उन्होंने बहुत से गीतों का उल्लेख किया। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जिंदगी शायद इसी का नाम है, हर किसी की अपनी तलाश है, अपनी चाहत है, अपनी कहानी है। कोई फुर्सत के लम्हों में खुश रहता है तो कोई काम करके खुशी ढूंढता है, तो किसी का संसार अपनों की मौजूदगी से ही महक उठता है। कभी दुख के बादल घिराते हैं तो कभी उम्मीद की किरण आती है, लेकिन अधूरे पलों को भी खूबसूरती से जी लेना जीवन की सबसे बड़ी कला है। एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा जहां सच शायद यही है कि हर इंसान किसी न किसी तलाश में है। किसी को सुकून चाहिए, किसी को सफलता, किसी को कोई अपनों की भीड़ में अपना होना चाहता है, तो कोई कुछ पल अकेले जीना चाहता है। इच्छाएं पूरी तो होती हैं तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, यही जीवन का चक्र है। इसलिए मुकम्मल जहां शायद किसी के पास नहीं होता, लेकिन जो अपने आप में संतोष, कृतज्ञता और प्रेम ढूंढ लेता है, उसके लिए ये हर अधूरापन एक सुंदर सफर बन जाता है। क्योंकि जिंदगी सब कुछ पाने का नाम नहीं, बल्कि जो मिला है उसे मुस्कुराकर जीने का नाम है। इतना बड़ा संदेश इतनी अच्छी तरह से आपने लिख भेजा, और वाकई ऐसा होता है कि अगर हम कुछ ढूंढते रहते हैं तो जीवन भर ढूंढते रहते हैं, लेकिन जैसे कस्तूरी मृग अपने कस्तूरी को ढूंढती रहती है जीवन भर, जबकि वो उसी के पास होती है, तो हर शांति जो है वो हमारे अंदर ही है। और ऐसा हमारे श्रोता भी कह रहे हैं, लेकिन हम भी ढूंढ रहे हैं कुछ सवालों के जवाब जो हम आपसे पूछने वाले हैं। हमें बताइए जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, किस फिल्म का गीत है, किसकी आवाज़ में है, नायक नायिका का नाम बता दें तो क्या बात है।

0: कालिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। हमने पूछा था भाई कौन नायक नायिका हैं इस फिल्म में, बता देंगे तो हमारे साथियों ने बिल्कुल बताया, अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी इस फिल्म में नजर आती है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि छत पर लेटने के दिन अब लद गए हैं, वो चांद तारों को निहारना, सर्दी में गुनगुनी धूप का आनंद लेना तो आज भी लेते हैं। तो ठीक है, वो दिन लद गए तो उसका कारण तो हम बाद में जान सकते हैं आपसे अगर आप हमें बताएं। वहीं लेकिन हमारे साथी कहती हैं कि संपूर्ण यहाँ कुछ भी नहीं, न रिश्ते न सपने न लोग न जिंदगी, हर किसी के हिस्से में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। किसी के पास सब कुछ है पर सुकून नहीं, तो किसी के पास सुकून है पर जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं। शायद यही जीवन है, तो जो मिल जाए उसे खुशी समझो और जो कुछ ना मिले उसे आगे बढ़ने की वजह मानो। हम पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश में लगा देते हैं लेकिन उम्र के एक मोड़ पर आकर लगता है कि परिपूर्ण तो यहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में कुछ कमी है तो घबराइए नहीं, यही कमी तो आपकी उम्मीदों को जिंदा रखे है। भाई वाह, क्या बात आपने कही। हमारे एक और साथी बैठ कहते हैं कि मानव जीवन उम्मीदों, जरूरतों, आशाओं और चाहतों से बुना हुआ एक ऐसा अनंत कैनवास है जिसके आसमान पर पल पल बदलते रंगों से सराबोर रहता है। जीवन का ये लालित्यपूर्ण आकाश तभी पूर्ण होता है जब हम जमीन की सच्चाई को समझकर उड़ान का हौसला रखते हैं, धूप की सकारात्मकता को अपनाते हैं और क्षितिज को छूने का जुनून बनाए रखते हैं। ये संतुलन ही मानवीय अस्तित्व का सबसे खूबसूरत काव्य है। और एक साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। जो अमीर है शायद उसके पास सुकून या अपनों का साथ नहीं है, जिसके पास समय है उसके पास साधन नहीं है, जिसके पास साधन है उसके पास वक्त नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी न किसी चीज़ की कमी तो बनी ही रहती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इंसान की तरह, आकाश की तरह इंसान की इच्छाएं भी अनंत हैं। एक जरूरत पूरी होती है तो दूसरी चाह जन्मती, इसी तरह इसी आकाश के नीचे एक कभी उदासी और असफलता छा जाती है तो कभी सुख और नई उम्मीद की किरण बिखर जाती है। ये जीवन के उतार चढ़ाव का शाश्वत नियम है। मानव जीवन के सबसे गहरे सच और उसके विरोधाभासों को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। तो बात तो बहुत सारी हो रही है लेकिन ये तो बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या कोई चीज ढूंढी है, बिल्कुल शिद्दत से जिसे ढूंढी हो ये बताइए। चाहे वो हो तो घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है, जीवन साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने किस चीज की तलाश सबसे ज्यादा की है अपने जीवन में और क्या वो आपको मिला या मिली, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में ढूंढने वाले कौन है, यानी नायक नायिका बताइए, फिल्म का नाम भी।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

घरों दा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाजें, गुलजार के बोल, जयदेव का संगीत। और इस फिल्म में नायक नायिका जरीना वहाब और अमोल पालेकर जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक घरौंदा। हमारे साथियों ने बताया कि क्या ढूंढ रहे हैं, उन्होंने क्या कभी अपने जीवन में कुछ ढूंढा और क्या वो उन्हें मिला। तो हमारे एक साथी ने तो बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि भगवान को ढूंढने की खूब कोशिश की, अभी भी जारी है। तो इनका जवाब भी हम उसी अंदाज में देते हुए कहते हैं कि अपने मन के अंदर ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफ़र विविध भारती पर, जिसमें ढूंढने की बातें भी हो रही हैं, सुख दुख की बातें भी हो रही हैं, और बातें हो रही हैं कि क्या जीवन में कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ है, कि हमारे जीवन में हर चीज़ मुकम्मल हो गई है, हमें अब ज़्यादा किसी चीज़ की चाह नहीं है, या जिन चीज़ों की चाह भी है वो भी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से कोई एक बेचैनी सी नहीं है, या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मन में खलबली नहीं मची रहती। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ज़िंदगी रंगमंच है, जन्म से लेकर देह परिवर्तन तक का सफ़र जीवन रंगमंच है। इससे पल इसमें हर पल दिन रात भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार आते जाते हैं, मुकम्मल अखंड जहां नहीं मिलता। और हमारे एक साथी का कहना है कि फुर्सत के पल, बिल्कुल आज संडे छुट्टी का दिन, फुर्सत के पल होने चाहिए थे, लेकिन घर की होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धनपत्नी ने लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट पकड़ा दी है और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आज सभी आइटम नहीं आए तो अदरक इलायची वाली चाय बना के नहीं पिलाऊंगी। भाई बड़ी खतरनाक बात हो गई है। तो और वो कह रहे हैं कि मैंने भी कहा जो हुक्म मेरे आका पर, मार्केट सुरीला सफ़र प्रोग्राम सुनकर ही जाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज पूरी लिस्ट पूरी कर दीजिए आप। और आप लोगों ने संडे के लिए क्या लिस्ट बनाई, क्योंकि अक्सर हम संडे के लिए कुछ एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे काम इस रविवार पूरे कर देने हैं, क्योंकि रविवार को होता है ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन। और आप कैसे बताते हैं अपना ये छुट्टी का दिन भी हमें बता सकते हैं आप। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमने आंगन में चार पहिया खाट पर आसमान के नीचे तारों को देखकर मीठी नींद में सोने का आनंद खूब लिया है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल ढूंढता है इस गीत के अंतरे में जो जो बातें हुई वो बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी उम्मीदों को बताते हैं। और उनका कमेंट थोड़ा खो गया है, लेकिन उनका यही कहना था कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी

बातें हैं, वो बातें कुछ इस तरह की हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की उम्मीद, इस तरह की ख्वाहिशें होती ही हैं। उसमें से कुछ तो ज़रूर पूरी हो चुकी होती हैं बहुत से लोगों की, और बहुत से लोगों के लिए बाकी होती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रादिन। इस गीत के विषय पर आपने जो पूछा उसकी एक बात वो है, वादियों में खामोशी सुनने की उन्हें चाह है। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आपकी ये चाह जल्दी ही पूरी हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नेहा जी, इच्छाओं की सूची पहले बहुत लंबी थी, अब थोड़ी छोटी कर ली है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब तलाश समाप्त होती है तो दुनिया नहीं बदलती, बल्कि दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। आम चीज़ें भी खास लगने लगती हैं, सुबह की धूप, हवा का झोंका या किसी की मुस्कान, हर छोटी चीज़ में एक गहरा रस महसूस होने लगता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि वाकई जब हम अपने जीवन में कुछ अलग तरह से सोचने लगते हैं, नज़रिया बदलते हैं, तो बहुत सी चीज़ें भी बदलती जाती हैं, हालांकि वो वही होती हैं जो पहले भी हुआ करती थी। तो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि हमें अगर जीवन में किसी भी चीज़ की तलाश नहीं है तो कोई एक ऐसा ही गीत हमें मिल रहा है, मिला है, जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि आपकी आज की लिस्ट क्या थी काम की, रविवार की कोई काम की लिस्ट बनाई थी आपने छुट्टी की, या आपका आपकी छुट्टी सप्ताह के किसी और दिन होती है, ये आप बताइए। और ये भी बताइए कि किस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

बरसात की रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिल जानवी से लिखा, रोशन का संगीत, मन्नाडे, आशा भोसले, बतीश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना। हमारे साथी कह रहे कि आज छुट्टी के दिन कुछ पौधे को लगाए हैं, जैसे रात रानी का जो गर्मी में सूख गया था, इसके अलावा एक आंवले का पौधा भी लगाया, अभी मौसम अच्छा है तो ये पनप जाएंगे। वहीं हमारे साथी का कहना है कि मैं वो खुशनसीब हूँ जिसकी गोद में ईश्वर ने दो कलियों यानी बेटियों का सुख दिया, पता ही नहीं चला कब बेटियों की विदाई होगी। सब कहते हैं अब तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन हमें लगता है कि फुर्सत मिलती कहाँ है। जो अपने साथ बैठ सके, मुझे अपने साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। अपने गुरुजनों की दी हुई शिक्षाओं का मनन करना, कभी कभी किसी अनाथ आश्रम में जाकर भजन सुनना सुना आना, अपने बुजुर्ग माँ को जाकर प्यार करना और उन्हें भजन सुना के ईश्वर आना। ईश्वर मुझे इस तरह से फुर्सत देता रहे ताकि मैं सबको हंसाती रहूं, और क्योंकि हमारे गुरु ने हमें एक फार्मूला दिया है, शुक्राना और मुस्कुराना, इस फार्मूले के पीछे हम अपना जीवन लगा देना चाहते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई ये आपने क्या कह दिया, हम तो संडे को सुबह से कार्य कर रहे हैं, इतनी सफाई होती है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, प्लम्बर को बुलाना, जितने अधूरे काम हैं उनको सही करना, इतना लेट हो जाते हैं पर प्रोग्राम सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रोग्राम से तो हम किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचाते, हालांकि आपको काम थोड़ा हल्का ज़रूर लगता होगा, ऐसा हमारा मानना है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज तो हमारे शहर में साप्ताहिक बाजार लगता है, मार्केट खुला रहता है, आज तो हमारी छुट्टी का कोई प्रश्न ही नहीं होता, हमारे यहाँ बाजार गुरुवार के दिन बंद रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा है कि आज बाजार में सामान लेने जाने की लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन सुबह से ही मानसून की पहली बरसात शुरू हुई और लगभग एक घंटे से अधिक झमाझम बरसात हुई है, इसके चलते सभी कार्यक्रम रद्द हो गए और बारिश में नहाते हुए बारिश का आनंद लिया, गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए और अब कार्यक्रम सुन रहे। तो देखिए वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक नया जो प्रोग्राम बन गया, हमें पूरी उम्मीद है इसमें आपको ज़्यादा आनंद आ रहा होगा। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि इंसान को अगर सुकून चाहिए तो डिज़ायर लेस होना चाहिए और लाजमी है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा दुख देती हैं, ऐसा मेरा मानना है, सिर्फ अध्यात्म का पथ ही जीवन में सुकून दे सकता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जीवन में कभी भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जितना इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ईश्वर से मांगता है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि ना तो दर्द गया ना दवा भी मिली, मैंने ढूंढ के ज़माना देखा, तो ये इनका कहना है। साथी कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, भाई सबके विचार अपने अपने हैं, कोई भी गलत नहीं कहीं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए आपको एक वक्त लगने वाला था बड़ा, और उसके लिए आपने बिताए पल पल पल गिनकर। कुछ ऐसा ही ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है और इसमें नायक कौन थे।

लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और इस फिल्म में नायक नायिका विद्या बालन और संजय दत्त नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। भाई वाह, बहुत ही सही तरह से इन्होंने अपनी बात कही। हमारी एक और साथी कहती हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है। किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यह है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि हम अपनी अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती। जो मिलता है वह अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तान में सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं। एक और साथी कहते हैं कि इंसानी उम्मीदें, आशाएं, चाहते और जरूरतें इस आकाश की तरह असीम और अनंत हैं। यहाँ जितने इंसान हैं उतनी ही कहानियां हैं और उतनी ही उनकी जरूरतें। कोई अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कदर नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर रहा है, तो कोई महज चंद फुर्सत के लम्हों की आस में है। हर शख्स यहाँ किसी न किसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है और अपने हिस्से की कमियों को पूरा करने में जुटा है। शायद इसी कश्मकश का नाम जिंदगी है। मिला जो कुछ भी उसे ही मुकम्मल मान लिया, अधूरी ख्वाहिशों को खुदा की रजा मान लिया, ऐसा इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने बताया कि घर की चाहत थी जिसके लिए दिन रात एक कर दिया और अपना घर का सपना पूरा हुआ, पर कुछ सालों वहां रहने के बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और फिलहाल वहां नहीं रहते, पर अपने घर को बहुत मिस करते हैं। हिमकौर साथी ने कहा कि घर की बहुत तलाश की थी और आज से 10 साल पहले हमें हमारा खुद का घर मिला। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि मनुष्य ढूंढता क्या है, बचपन में खिलौना, जवानी में प्यार, बुढ़ापे में वक्त और मरते वक्त माफी। असल में हम सब अपनेपन के भूखे हैं। कोई कहे तू है ना टेंशन मत ले, पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, पर जो तुम्हें तुम जैसा एक्सेप्ट कर ले उसे कभी मत खोना। तो ये बात भी बहुत सही आपने कही। हमारे एक और साथी ने इतवार का क्या प्लान है ऐसे बहुत से साथियों ने बताया, लेकिन हमारा तो प्लान है कि कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाएं और आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समय या इन दिनों आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें बताइए। और हमें ज़रूरत है कि इस गीत को किसने गाया है ये भी आप हमें बताएं।

0: जरूरत है।
1: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, मनमौजी फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें नजर आते हैं किशोर कुमार ही। हमारे साथी कहने कि आज बाहर बच्चों संग घूमने आए हैं इसलिए सक्रियता से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि आप सक्रियता से भले ही शामिल ना हो लेकिन अपने पारिवारिक माहौल में जरूर शामिल रहें। हमारे एक और साथी कहने कि आज इतवार है फिर भी डॉक्टर को दिखाकर आपके कार्यक्रम पर भागते हुए शामिल हो रहे हैं। यहाँ जो धूप है वो तो बाहर के देशों में, गर्म देशों में भी नहीं पड़ रही होगी। वहीं हमारे एक और साथी कहने कि हमारे तो क्या संडे क्या मंडे, बच्चे स्कूल जाते थे तब संडे को लंबी लिस्ट होती थी उनके फरमाइश की, एक को कुछ चाहिए होता था तो दूसरे को कुछ। पति के जॉब में संडे ऑफ नहीं होता तो अब बच्चे साथ में नहीं है तो भी पता नहीं चलता कि संडे है या मंडे। वैसे हमारे जो साथी कह रहे हैं कि भाग कर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, भाई भागने की क्या जरूरत है क्योंकि आपके फोन में आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं और आराम से अपने फोन पर हमारा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं कहीं भी रहकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अब हमें रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी तो पूरे सप्ताह है क्योंकि मैं घर पर ही बैठे हूं, पत्नी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, दुकान बंद है। तो बिल्कुल उनका बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही वक्त में तो ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक और साथी कहने कि रविवार के दिन सभी घर में होते हैं तो आज के दिन भोजन में कुछ विशेष बनाया जाता है और मीठा व्यंजन तो अवश्य ही बनता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने व्यंजनों का नाम नहीं लिखा, वरना तो कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हमारे एक और साथी कहने कि आज रविवार के दिन एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, उसका तबादला हो गया है दूसरे शहर में। और हमारे एक और साथी हैं वो बता रहे हैं कि इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है खूब तेज बारिश की क्योंकि सभी जल स्रोत सूख गए हैं। भाई तो ये बारिश कई जगहों पर आ चुकी है और आपके जगह आपके स्थान पर भी बहुत जल्द बारिश आएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे एक साथी को देखिए, उन्होंने कहा भी कि सुरीला सफर जब शुरू किया था तो कड़ी धूप थी कि हमने जल्दी से कपड़े धोकर सुखा दिए और देखते ही देखते काली घटा छा गई और बादल गरजने लगा, अंधेरा सा होने लगा। कैसा मौसम करवट अचानक से लेता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान की कुदरत, भगवान की रहमत, भगवान की बरकत। सच में लाजवाब है, सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, दोनों का सम्मान करें, चाहे धूप हो चाहे काली घटा छाए, दोनों में हम मस्त रहें। एक और साथी ने हमारे कहा है, बात बता रही हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कह रहे हैं कि गर्मियों में नहीं, पल पल पल कैसे कटेगा ये हमने पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्री प्लानिंग के कारण 5-6 घंटे की बिजली चली जाए तो वो ऐसा लगता है कि कैसे कटेगा ये पल, और गर्मियों का मौसम हो तो ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हमारे एक साथी ने किस्सा लिख भेजा है कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त एक आस दिल में लिए घूमते थे जो कभी पूरी नहीं हुई। दरअसल मैं बचपन से अमिताभ जी का फैन था, रात दिन उनके बारे में सोचा करता था, उनके जैसा बनना चाहता था, उनकी फिल्में देखता था, उनके जैसे हेयर स्टाइल रखता था, उनके जैसे बेल बॉटम की पैंट पहनता था और आईनी के सामने खड़े होकर उनकी फिल्मों के संवाद बोला करता था। स्कूल में भी ऑफ पीरियड में उनके संवाद बोलता था, इसके लिए टीचर की मार भी पड़ती थी। बड़ा होता गया, जीवन की सच्चाइयां उलझने सामने आती गई और अमिताभ बनने का सपना सपना बनकर ही रह गया। भाई कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ बने ही हुए हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि संडे को तो और भी ज़्यादा काम हो जाता है, छुट्टी के दिन तो दिन छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि 4 हाथ हो जाएं। भाई ये वाली तो आपकी ख्वाहिश ना पूरी हो हम ये मानना चाहते हैं, क्योंकि 4 हाथ हो जाएंगे तो उतना ही काम भी बढ़ जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ज़रूरत है मूसलाधार बारिश की, तो जल्द ही आपकी ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी क्योंकि प्रकृति इन ज़रूरतों को ज़रूर पूरा कर देती है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी आशाएं आपके पास हैं जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो जाएंगी जल्द ही, ऐसी आपकी आशा है। साथ में ये भी बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

इकबाल फिल्म का ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया, फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना, के सलीम मर्चेंट और डोमिनिक लिंटोन की आवाज़ में आपने ये गीत सुना, इरफान सिद्दीकी ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं, हर दिन बिजी लाइफ। भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज कल एक मुंह से बोलने की ज़रूरत है क्योंकि हम अकेले हैं, कहने को तो सभी ही हैं इस परिवार में, लेकिन खाना चाय देने से हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है। मैं पत्नी को मिस कर रहा हूँ जो अब नहीं है। बिल्कुल आप अपनी उम्र के लोगों के साथ कोई मित्रता गांठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नौजवान घर के सदस्य होते हैं वो अपने कामों में भी उलझे रहते हैं। आपको समय पर चाय नाश्ता खाना तो ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन एक भावनात्मक सहारा आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने से ज़रूर मिल जाएगा। हमारे साथी कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी श्रीमती वास्तव में मेरी सेवा करती हैं और मैं भी अपनी धर्मपत्नी का पूरा सम्मान करता हूँ। भाई एक रिश्ते की जो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए एक रिश्ते में, और ये आपके पास है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, आप शुभकामनाएं देते हैं। तो कार्यक्रम में जो एक कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस गीत के बारे में तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखा और हमने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अब आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरा ही गीत है जो आपकी और हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा, और उसे ही कार्यक्रम का अंतिम गीत बनवा रहे हैं। हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गीत है और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं।

खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत ही हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के दो बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे दोपहर न्यूज़, मिडडे न्यूज़ और उसके बाद दोपहर न्यूज़ आकाशवाणी दिल्ली से।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस: गवर्नमेंट विथड्रॉज इमरजेंसी कर्ब्स ऑन नेचुरल गैस सप्लाईज फॉलोइंग रिजम्पशन ऑफ एलएनजी शिपमेंट्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान releases 25,000 crore rupees assistance to states

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत

0: राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित LNG के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से LNG की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं अब 125 दिन रोजगार 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VBG रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
4: The significance is immense.
3: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
6: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। जनबाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
7: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
8: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
6: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
9: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर 3 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

0: मोहम्मद रफी की आवाज़ में बहु बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अभी आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी की कलम से निकला है ये शब्द और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज इसे मिली। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में चलिए सुनते हैं जी चाहता है फिल्म से ये गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, क्या कहने।

0: जी चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें, हसरत जयपुरी की बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: होशियार।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और कार्यक्रम में अगला ये गीत आपने सुना राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गुमनाम फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस अधिनियम के तहत अगले 5 सालों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया जाएगा।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: राज्य सरकार प्रदेश में

0: स्थापित स्टार्टअप, सृजित रोजगार और निवेश जैसे प्रमुख परिणामों का मूल्यांकन किया जाएगा। नवाचार नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार ने वर्ष 2026 से वर्ष 2028 तक की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर गहरा के समीप एक निजी बस पर पत्थर गिरने से इसमें सवार एक यात्री की मृत्यु हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल यात्रियों का चंबा मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। घटना के समय बस में करीब 40 लोग सवार थे और ये सभी भरमौर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम से वापिस लौट रहे थे। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी सहारा योजना जनजातीय जिला किन्नौर में गंभीर व असाध्य बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत प्रदान कर रही है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में योजना का संचालन स्वास्थ्य विभाग से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
1: जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में किन्नौर में सहारा योजना के 25 सक्रिय लाभार्थी हैं। लाभार्थियों की EKYC प्रक्रिया प्रगति पर है। प्रक्रिया पूरी होते ही पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किन्नौर जैसे जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्र में गंभीर बीमारियों का उपचार कराने में लोगों को आर्थिक और भौगोलिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिला कल्याण अधिकारी ने जिले के पात्र नागरिकों से अपील की कि यदि वे सहारा योजना के लिए पात्र हैं, तो वे अपने निकटतम तहसील कल्याण कार्यालय अथवा जिला कल्याण कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: प्रदेश भर की पंचायतों में नव निर्वाचित प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में आज पहली ग्राम सभा बैठकों का आयोजन किया गया। पंचायती राज विभाग के आदेशानुसार हुई इन ग्राम सभाओं में स्थानीय मुद्दों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर सहित कुछ अन्य जिलों में हल्की वर्षा हुई है। राज्य के मैदानी इलाकों में इन दिनों उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है भारत की डिजिटल शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना। वाचक स्वर अनुराग पराशर।
0: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा एक खुला मंच है जिससे देश भर के छात्र और शिक्षक अनेक भाषाओं में अच्छी गुणवत्ता वाली पाठ्यक्रम से जुड़ी डिजिटल शिक्षा सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। यह शिक्षा मंत्रालय की PME विद्यांश पहल का एक अहम हिस्सा है जिसका लक्ष्य ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाई को जारी रखना है। दीक्षा को विद्यालयी शिक्षा के लिए देश का वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इस मंच की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्था CIET के सहयोग से चलाया जाता है। दीक्षा को अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है और इसलिए इसे लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न बोर्डों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। किंडर गार्टन से 12वीं कक्षा तक की पूरी डिजिटल शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाता है। इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा तक सब कुछ शामिल है। दीक्षा का लक्ष्य प्रौद्योगिकी और नवाचार से चलने वाली एक गति

0: गतिशील शिक्षा प्रणाली बनाना है। ये अलग अलग तरह के सीखने वालों की आवश्यकताओं के लिए आसान, रोचक और व्यक्तिगत अनुभव को बढ़ावा देता है। डिजिटल और संवादात्मक संसाधनों के माध्यम से शिक्षा पारंपरिक कक्षाओं से आगे बढ़ती है। ये छात्रों में ऐसे कौशल विकसित करता है जो अकादमिक सफलताएं, व्यक्तिगत विकास और सर्वांगीण विकास में सहायता करते हैं। इस मंच पर मीडिया रीच इंटरैक्टिव संसाधन है। इन संसाधनों में 2D, 3D एनिमेशन, AR अनुभव, सिमुलेशन, वर्चुअल लैब और साइन लैंग्वेज वीडियो शामिल हैं। इन्हें अवधारणात्मक स्पष्टता बढ़ाने और सीखने के अलग अलग तरीकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें QR कोड वाली NCERT टेस्ट बुक हैं, जो कक्षा में आसानी से जुड़ने के लिए NCERT की वास्तविक पुस्तकों को वीडियो संवादात्मक और शिक्षकों के मार्गदर्शन से जोड़ती है। इसमें दिव्यांगों के लिए डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर्मेट टेक्स्ट टू स्पीच और इंडियन साइन लैंग्वेज ISL वीडियो जैसी समावेशी सुविधाएं हैं। दीक्षा संख्या अभ्यास प्रश्नों, विस्तृत समाधानों, अनुकूल आकलन और योग्यता आधारित प्रश्न बैंक द्वारा व्यक्तिगत शिक्षा को बढ़ावा देता है। ये कमियों की पहचान करता है और समय पर सुधार करने में सहायता करता है। ये निष्ठा और राज्य विशिष्ट TBD मॉड्यूल्स के माध्यम से शिक्षकों के पेशेवर विकास में सहायता करता है और देश भर के शिक्षकों के कौशल को बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता के अनुसार सीखने वाला प्रमाणित प्रशिक्षण देता है। ये एकीकृत प्रणाली विषय वस्तु क्यूरेट करने, उपयोग करने और विश्लेषण को एक करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP वर्ष 2020 के अनुरूप समावेशी डेटा आधारित और आनंददायक शिक्षा को बढ़ावा देता है। दीक्षा मंच को विकेंद्रीकृत भागीदारी और विषय वस्तु के कठोर सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका रूप समय पर समीक्षा द्वारा गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने का योगदान को संभव ये सब बनाता है। ये मंच एक संघ की तरह काम करता है, जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी विषय वस्तु अपलोड कर सकता है और स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकता है। प्रतिभागी देश भर से अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में इलेक्ट्रॉनिक विषय वस्तु और पाठ्यक्रम अपलोड करते हैं। इस तरह से भाषाएं पाठ्यक्रम के तालमेल और पढ़ाने के तरीकों में बदलाव किया जा सकता है, जिससे देश भर के अलग अलग तरह के सीखने वालों की आवश्यकताएं पूरी होती है। इस मंच पर मौजूद डिजिटल शिक्षा संसाधन संदर्भ के अनुसार सही और लगातार अद्यतन वाले होते हैं।
1: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, दिन के 3:10 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: तो अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचणगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, वृशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपके पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज़, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साधो।

10 नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाला ये बताएं, उससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अभिषेक नायडू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ, तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत, इंदिवर के बोल, पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं, और अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंकी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की, और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज़। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है, सौदागर फिल्म के लिए ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखू जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, जाधव प्रशांत, राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझमें भी

0: दशहरी के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
1: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
2: कौन रानी हीरावती?
1: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गुंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों?
0: मित्र, अब क्या किया जाए?
2: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
1: बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र की साथ पूरी।
3: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
4: भला हम कौन होती हैं
3: महाराज की साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
4: चलो।
1: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
2: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
0: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
1: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है, तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
0: परंतु देवी,
1: मेरे साथ छल न कीजिए। वहां आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
0: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
1: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़िका, हम चलेंगे।

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकलावलका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
1: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देके कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना?
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया महाराज। कोई छिपकर सुन न रहा हो, कान में सुनिए। मैं नाक को बांध करके नाग मुद्रा लेके
1: जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है। इस प्रतिहारी जयसेन को सब समझा दो।
0: अभी समझाई देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए। जयसेन इधर आओ।
2: कहिए आज ये गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजी आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे शियारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
5: महाराज मर गया, मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भागकर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
6: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहां फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल शरीर के सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
3: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।
5: फांसी का लो मुझे दबोच लिया।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला न हो।
5: मेरा तो अन्नंगा करता जा रहा है, सारे शरीर में विष फैलता जा रहा है।
3: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
4: अरे गौतम तनिक संभालिए, धीरज से काम लीजिए।
0: महाराज मैं आपका पाल सका हूँ, सिनाते मेरे बाद मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
6: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आर्य गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा। महाराज
1: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
6: देव की जैसी आज्ञा।
0: कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुके हो वो क्षमा कीजिए।
3: नहीं नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
6: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
3: मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
6: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए गौतम।
0: जैसे ये अंगूठी मुझे दो, कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना।
7: और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमदवन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन?
1: अरे गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
2: ये देखो महारानी की अंगूठी।
1: अंगूठी तो उन्हीं की है।
2: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो। ओह, यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
1: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
2: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और।
1: ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
3: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
2: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढकर वहीं लाया।
3: जो आज्ञा।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है।
1: अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
0: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
1: स्वामी की जय हो। सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीख भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
0: क्यों सखी,
1: चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
0: ये छोटी रानी इरावती है।
1: ओ सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
0: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर डाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
2: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
1: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
3: हे कमल नयनी,
1: स्वामी की जय हो।
4: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रोट गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
1: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रोट गई थी? स्वामी की जय हो।
4: प्रिय,
5: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
4: मित्र क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी हैं, परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है हमारी।
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
1: सखी, मुझ अभागी की तो महाराज से स्वप्न की कभी भेंट नहीं हुई।
0: महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
4: उत्तर क्या दें बकुला वालिका, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
6: अरे बकला वालिका, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरण चले जा रहा है। आ आ, उसे भगा ले, चल
0: चले।
6: महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र गृह के द्वार पर हूँ।
7: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
8: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
7: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
8: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
7: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
8: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
7: अरे पगली, किसी दूसरी से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया, पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: देवी वो देखिए आज ही गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका। हाँ?
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
3: ये कृतघ्न बामन,
0: ठहरिए आइए हम दोनों उस खंबे की ओट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक बामन पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
3: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
4: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
5: महाराज रुकिए, उधर मैं जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
4: मैं कहाँ है सांप?
5: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए। कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
4: देवी इरावती,
1: सखी बकुलावलिका, ये कैसा है? बकुलावलिका तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आ गया।
2: ओह तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया, पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर के सामने आके रहा।
6: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
1: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
0: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
1: सखी बकुलावलिका, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
7: अच्छा तो ये सब इस बामन की करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
3: देवी यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे फंसने देता?
7: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
8: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहले अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहले अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहरे अशोक के पूजने का उत्सव मनाएंगी।
9: वासियों सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार। वीर सेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने हे स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न हार

0: विशापति महाराज अग्निमित्र
1: रमद वन उत्सव में

0: जय हो, विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
1: देवी, सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
0: विराजिए देव।
2: विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
1: प्रणाम भगवती।
2: आपके मन की साथ पूरी हो।
0: आर्य पुत्र, फूलों से लदे इस सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
1: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं, देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
0: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
1: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
3: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियां आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
1: ले आओ।
3: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज, प्रस्तुत हैं।
4: महाराज की जय हो, महारानी की जय हो।
1: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
4: महाराज, हम लोगों ने संगीत सीखा है।
1: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
0: मालविका, आके देवी, देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
4: अरे राजकुमारी, आप यहाँ? जय हो, राजकुमारी की जय हो।
0: अरे अरे मालविका, राजकुमारी।
1: मालविका राजकुमारी?
4: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
1: कैसे?
4: सुनिए महाराज, आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
0: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
1: भद्रे, बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
4: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य स्मृति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
1: फिर क्या हुआ?
4: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
2: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
1: भगवती, आप?
4: राजकुमारी, सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिकी जान पड़ती हैं।
2: हाँ, वही है।
4: प्रणाम भगवती।
2: कल्याण हो।
1: भगवती, क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
2: हाँ महाराज, अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
1: अच्छा, अब कुछ बात समझ में आने लगी।
2: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
5: मंत्री जी, ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है, यहाँ तो दिन में भी जैसे रात हो गई हो।
6: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
2: भैया, आप भी तो?
6: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
5: अरे शेर, क्या हुआ? क्या हम लोग एक रुक क्यों गए?
7: जान प्यारी है, वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
5: वही हुआ ना जिसका भाई था।
2: ठाकुर ने खेल दिया है।
6: चाहिए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।

0: हमारे सैनिक एक एक करके घायल हो रहे हैं, सब मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया लघु लोहान होकर इधर आ रहे हैं और एक डाकू ने भैया को आके कहीं खेल दिया है। हम असहाय रह गए।
1: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूटकर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
2: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
3: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
1: ऐसा न कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
3: वो क्या?
1: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप्पी साधे रही। और
4: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
2: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
4: जो महाराज की इच्छा।
5: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधे राज्य का शासक बना दिया है।
6: उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
4: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
2: पिताजी का पत्र? लाओ देखें।
5: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकटपूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
2: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनु ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
5: फिर क्या हुआ?
2: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ा कर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
1: महाराज, महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों की ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
5: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
2: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञ सेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
5: जय सेन।
4: आज्ञा देवी।
5: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मुंह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, कोई विघ्न न डाले।
4: देवी की कैसी आज्ञा।
5: मालविका इधर आओ।
6: प्रस्तुत हूँ देवी।
5: आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप लज्जा क्यों रहे हैं, मालविका को ग्रहण कीजिए।
7: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजाई करते हैं।
8: श्रोताओं, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
9: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में

0: एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म दो दो तीन तीन साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8, 10, 12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
0: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज, जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट? तो उनके साथ काम करना इट सेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे, तब उन्होंने एक प्ले किया था भटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता। तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं, तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं? बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
0: वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड
0: तो
1: जेंडर।
0: थर्ड जेंडर जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है, अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो, वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी
1: ठीक है,
0: लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहां गाना सुनते हैं।

0: अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी, ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व, मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है, वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक, जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी, और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने सोचा, चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने, और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और
1: ओ
0: कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा ची कामा कराई जात तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है, तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी
1: कि एक बार फिर से वो
0: पड़ेगी
1: जनाना रोल
0: हाँ
1: आ रहा है।
0: जनाना रोल आया है, तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट
1: अरे
0: हमें
1: गजब।
0: बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है।
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतियां क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उस
1: और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी,
0: बहुत
1: आज
0: बहुत
1: तक उसकी
0: ज्यादा,
1: रीलें चलती हैं और
0: हाँ
1: जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं
0: करेक्ट।
1: जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओ यस ऑफ कोर्स, हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये
1: बिल्कुल,
0: काफी सारी फिल्में हैं
1: ये
0: जो
1: वो
0: उस वक्त,
1: 80s वाला दौर जो पूरा
0: हाँ हाँ
1: था।
0: हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्म जी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई, तो एक वो दौर चला, एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो
0: तो
1: चलती
0: वो
1: है।
0: चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुन दा, के या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो हुकूमत वाज अ फिल्म लाइक दैट, कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे, और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो? तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा यू नो बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों? तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे।
1: हाँ, हाँ।
0: और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है, और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में,
1: और बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा काला नाग।
1: हाँ।
0: काला नाग राइट, डीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ शुरू।
1: हाँ, और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं ना काला नाग, सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट, ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना।
1: हाँ बिल्कुल,
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, और दे यूज टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग।
1: अरे गजब।
0: तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप रे।
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल, उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं।
0: हाँ,
1: जो कि एक विलेनिश रोल होता है, खतरनाक।
0: हाँ।
1: वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना।
0: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती। मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है।
1: सिर्फ सुना है,
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की।
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश।
0: ओ,
1: क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है।
0: करेक्ट,
1: वहां से वो पूरी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है। तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ।
0: करेक्ट,
1: आखिरी रास्ता में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था।
0: बहुत ही और
1: बहुत
0: उस समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था।
1: ऑफ कोर्स,
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था। आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी, और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे। राइट, सब लोगों को ऐसा जा रहे हो आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे। और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ बच्चन के
0: सामने
1: विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं। वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है।
0: पूरा दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे। वो आप मस्त रहते थे, उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना
1: अपना
0: है,
1: फर्ज निभाओ,
0: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट? तो
1: बिल्कुल
0: प्रेशर तो बनता है, इज व्हाट आई थिंक. लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म हो गई बात. और जो आप नफरत की बात करते हो, तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था.
1: बिल्कुल
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे, वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते.
1: अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी हैं तो थोड़ा डिफरेंट है?
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था. तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था. और स्कूल में ऑफकोर्स सब लोग मुझे जानते थे, बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी, बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त. अच्छा. अब मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है. और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है. टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था. पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं. हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट. तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ. लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो. ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था. और ये बहुत ही मजे वाली बात थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो.
1: ओहो, करेक्ट.
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना. इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट. तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस्ट लगता था कि अरे ऐसे कैसे इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूँ फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं. तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी, तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे.
1: बिल्कुल. सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था. मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से.
1: अच्छा.
0: हाँ. और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था. जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी. और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत,
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था. दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूंट एक एक घूंट ऐसे करके. तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे एक डेढ़ घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे.
1: अच्छा.
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो. वो जल्दी उठते थे, 6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे. और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना. बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से आते हैं. मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है. तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें. मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है. तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी. तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे.
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे कभी उसकी साइड लेते थे. पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना हमें जो कहना है वो कहने देते थे. फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी या आपने क्यों नहीं ये सही समझा या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था. पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है. आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है ये आप डिसाइड करो.
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं बिल्कुल नहीं.
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे.
1: सख्त मनाही.
0: सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे. लोगों ने बहुत प्यार किया. तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है. मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम चार पांच फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे. तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था तो वो उन्हें देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए. औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहाँ पर बीबी का मकबरा भी है. तो एक तो जहाँ पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए बिकॉज वहाँ पर वैसे ही इतनी रश होती है. लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब पकड़, एक घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं. तो वो देखनी थी बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी, उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया. खैर वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था. हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं. पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी. तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए.
1: अरे अरे अरे,
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए. वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते.
1: ओहो,
0: तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ. तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं पर ये एक फैमिली मैन भी है, उसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है.
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं. ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो. लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है ऐसे हम कह सकते हैं.
1: बिल्कुल, यहाँ हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं.
0: Sure.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे,
1: पंच आते थे और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: फिर वो जवाब बाद में,
1: हाँ वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उन पे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे करते रहे करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
0: बिल्कुल, वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल रही थी,
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी। और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी
0: बिल्कुल,
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुंदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
0: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
1: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा, आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन,
1: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ
0: तो
1: काम
0: मुझे वो दृश्य याद आ गया जिसमें वो सो रहे हैं और वो जगाने आती हैं।
1: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्में दिखाऊं कैसे उसे, है ना? क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत, तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
0: अर्धसत्य
1: दिखाऊंगी, ये सारी फिल्में दिखाऊंगी।
0: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था,
1: बहुत ही अलग,
0: क्या लीग थी वो।
1: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार। एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं, वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी,
0: बिल्कुल,
1: पर वो
0: लेकिन
1: इतनी
0: ये
1: ओवर
0: कुछ
1: द
0: अलग
1: टॉप
0: था।
1: नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी,
0: यस
1: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो। मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था, तो
0: अच्छा
1: एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं। फिर दिलीप ताहिल जी थे, उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी,
0: बिल्कुल,
1: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी
0: हाँ,
1: काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
0: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए।
1: प्लीज।

0: कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोघी ये जो फिल्म थी NFDC की फिल्म थी,
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे सुनील सुकटनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी, राइट। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए, बिकॉज सुमित्रा भावे ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निळु फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोघी की थी। दोघी में फिर

0: उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे, पर उन्होंने वो किए थे. वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी. तब
1: और
0: तक
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
0: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी. और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था. तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा. लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे. तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है.
1: हाँ,
0: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म,
1: फिल्म
0: को
1: मिला
0: नेशनल अवार्ड. यस,
1: जी.
0: तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
1: और दूसरी तरफ ये इंटेंस
0: काम कर रहे थे, बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी. जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है. आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूँ. लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है. तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था. तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं. मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोगी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोगी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो. तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है. क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं.
1: राइट,
0: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे.
1: जी,
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो. अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो.
1: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
0: बहुत
1: है.
0: अच्छी बुनियाद है. और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है. तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं. आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था. मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी. कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे.
1: राइट.
0: अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है. तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें कैसे मोल्ड करना है. एक्टर का से बहुत कम रह गया है. तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया. इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर 1 मिली, वैसे ही दोगी मिली, वास्तु पुरुष मिली, गुप्त मिली. एग्जैक्टली. और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था. जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी. तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था.
1: बिल्कुल.
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी. तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, NFDC की ही फिल्म है
1: जी.
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए. मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी. तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर, तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहाँ के जंगल और उसमें शबाना जी भी है और काफ़ी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है, तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म.
1: बिल्कुल, यहां गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं
0: श्योर
1: क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ.

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: शाम के 5 बजने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्धविराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि इस निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में सिर्फ एक ही दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों से बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तुओं को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा

0: प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से दो दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूह में संस्थागत नियंत्रणता और सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अस्मरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। वहीं से पहले फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 MHz पर। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम भजन संध्या। शाम 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम रहेगा युव मंच। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। सफर सुहाने, गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर।

श्रोताओं, शाम 6:30 पर आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम गल तो सादी, जिसका विषय है पानी की हर बूंद अनमोल है, वर्षा जल संरक्षण में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप वर्षा जल संरक्षण के विषय पर अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो शाम 6:30 से लेकर 7 तक लाइव फोन इन कार्यक्रम गल तो सादी में आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 22 31 22 और हमीरपुर का एरिया कोड है 01972। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7 आप सुनेंगे हिंदी समाचार। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:10 पर आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया फाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, और इस दौरान आप सुनेंगे शाम 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार, रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार संध्या, रात्रि 9 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9 और रात्रि 11 आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:07 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या। भजन संध्या कार्यक्रम च तुहां सारियां दा स्वागत है। अज दे इस कार्यक्रम च मैं हूँ नरेश चंदेल। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संजीव दीक्षित कने साथियों के स्वर च इस पहाड़ी भजना दें।

0: राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर?
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: अरे सागर बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
5: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
4: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
4: वो कैसे?
5: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
4: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
5: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
4: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
5: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
4: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
5: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
3: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवमंच।

युवा साथियों नमस्कार। युव मंच कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ नरेश चंदेल। दोस्तों आज है 5 जुलाई और आज है विश्व बैडमिंटन दिवस। जी हां, विश्व बैडमिंटन दिवस हर वर्ष 5 जुलाई यानी आज मनाया जा रहा है और इस दिवस का उद्देश्य बैडमिंटन खेल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है, युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। और दोस्तों यह दिन विश्व भर में बैडमिंटन के प्रचार प्रसार और खिलाड़ियों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। बैडमिंटन दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है और इसे खेलने के लिए रैकेट और शटल कॉक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये खेल तेजी, फुर्ती, संतुलन, एकाग्रता और रणनीति का बेहतरीन मेल है। बैडमिंटन सिंगल्स और डबल्स दोनों रूपों में खेला जाता है। भारत में बैडमिंटन के क्षेत्र में विश्व स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन, सात्विक साईंराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जैसे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करके देश का गौरव बढ़ाया है। युवा साथियों, खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है, हृदय मजबूत रहता है, मानसिक तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि बच्चों को, युवाओं को, वयस्कों को, सभी को खेलना चाहिए और सभी आयु वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ व्यायाम भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जब हम खेलते हैं तो हम फिट रहते हैं। और भारत सरकार ने भी खेलो इंडिया और फिट इंडिया पर बहुत से कार्यक्रम आयोजित करती है भारत सरकार। अगर हम खेलो इंडिया की बात करें तो खेलो इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य है देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी और खेलो इंडिया का उद्देश्य भी यही है कि बच्चों और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से प्रतिभाओं की पहचान करना। युवा साथियों, खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, पोषण और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना भारत को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मजबूत बनाना जो है खेलो इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। और खेलो इंडिया की बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण भी दिया जाता है और खेल अवसंरचना जैसे स्टेडियम, मैदान, इन सब का विकास करना भी खेलो इंडिया के अंतर्गत आता है। और युवा साथियों, खेलो इंडिया के साथ साथ फिट इंडिया मूवमेंट की भी शुरुआत 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर की गई थी। युवा साथियों, इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को नियमित व्यायाम, योग, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। और फिट इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय बनाना, मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम करना, दैनिक जीवन में योग, व्यायाम और खेलों को शामिल करना, स्वस्थ और जागरूक भारत का निर्माण करना। फिट रहने के बहुत से उपाय हैं युवा साथियों। अगर हम प्रतिदिन कम से कम 30 से 60 मिनट तक व्यायाम करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। संतुलित और पौष्टिक भोजन करें तो हम फिट रह सकते हैं। पर्याप्त नींद लें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। नियमित रूप से योग और प्राणायाम भी करना चाहिए और पैदल चलने और साइकिल चलाने की आदत को ज़रूर अपनाना चाहिए। खेलो इंडिया देश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का अभियान है, जबकि फिट इंडिया हर नागरिक को स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम नियमित खेल, योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो केवल हमारा स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा बल्कि एक स्वस्थ, सशक्त, फिट भारत के निर्माण में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं।

0: शांति।
1: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
2: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
1: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: दोस्तों, आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युव मंच। युवा साथियों, आज का युग प्रतिस्पर्धा और तकनीक का युग है। बदलती दुनिया में केवल डिग्री प्राप्त कर लेना ही सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि अपने कौशल अर्थात स्किल को विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। युवा साथियों, वर्तमान समय में वही व्यक्ति आगे बढ़ रहा है जो नई नई तकनीकों और कार्यों को सीखकर स्वयं को समय के अनुसार तैयार कर रहा है। कौशल विकास न केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि उसे दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने योग्य बनाता है। और हमारे देश में अगर बेरोजगारी एक चुनौती है, लेकिन अगर युवा साथी अपने कौशल को बढ़ाने पर ध्यान दें तो वह नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन सकता है, और यही आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य भी है। युवा साथियों, कौशल यानी किसी कार्य को दक्षता और निपुणता के साथ करने की क्षमता से है, और प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष प्रतिभा होती है। किसी को लेखन में रुचि होती है, किसी को कंप्यूटर में, किसी को खेती में, बागवानी में, हस्तशिल्प, सिलाई, कढ़ाई, संगीत या व्यवसाय में। जब व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल विकास करता है, तब वह सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। और युवा साथियों, आज कंपनियां भी केवल डिग्रियां नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान और कार्य कुशलता को अधिक महत्व देती है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। युवा साथियों, तकनीकी क्रांति ने रोजगार के स्वरूप को बिल्कुल बदल दिया है। पहले जहां पारंपरिक नौकरियों की मांग अधिक थी, आज डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन निर्माण, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में रोजगार के बहुत से अवसर हो रहे हैं पैदा। और जो व्यक्ति इन क्षेत्रों में अपने कौशल को विकसित करता है, उसके लिए रोजगार के अनेक द्वार खुल जाते हैं। वहीं जो व्यक्ति समय के साथ स्वयं को नहीं बदलता, उसके लिए अवसर सीमित होते जाते हैं। युवा साथियों, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में कुशल हो जाता है, तो वह अपने लिए रोजगार के अवसर स्वयं तैयार कर सकता है। और यदि किसी युवक ने मान लीजिए कंप्यूटर रिपेयरिंग का प्रशिक्षण लिया है और वो अपना व्यवसाय खोल सकता है, और इसी प्रकार से कृषि आधारित उद्योग, डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग, ऑनलाइन व्यवसाय जैसे अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां कौशल के आधार पर सफल उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं। युवा साथियों, इस प्रकार कौशल विकास व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर भी देता है। अधिकांश युवा अच्छी नौकरी पाने का सपना देखते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कुछ युवा उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़े तो न केवल स्वयं सफल होंगे बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगे। जब कोई व्यक्ति उद्योग, व्यापार या सेवा केंद्र स्थापित करता है, तो उसे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इससे समाज के अन्य लोगों को भी काम मिलता है और एक छोटा सा व्यवसाय भी कई परिवारों की आजीविका का आधार बन सकता है। और युवा साथियों, आज देश में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां साधारण परिवारों से आने वाले युवाओं ने अपने कौशल के बल पर बड़े उद्योग खड़े किए और हजारों लोगों को रोजगार दिया है। युवा साथियों, यदि ग्रामीण युवाओं को आधुनिक और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए तो वे अपने गाँव में ही रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हस्तशिल्प, बागवानी, जैविक खेती, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, पर्यटन, स्थानीय खाद्य उत्पादों का निर्माण और ऑनलाइन विपणन जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण युवाओं को यदि सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिले तो वे शहरों की ओर पलायन किए बिना अपने क्षेत्र में ही सफल उद्यम स्थापित कर सकते हैं और इससे गांव का आर्थिक विकास भी होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो इसी विषय पर हम अभी और भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
4: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
3: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
5: दोस्तों, आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवमंच। युवा साथियों, भारत सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी योजनाएं युवाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और उद्यम स्थापना में सहयोग प्रदान करती हैं। युवा साथियों, इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। यदि युवा इन योजनाओं का लाभ उठाएं तो वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और युवा साथियों, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने रोजगार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। आज एक व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन व्यवसाय भी चला सकता है। इसलिए प्रत्येक युवा अपनी प्रतिभा को पहचाने, उसे निखारे और निरंतर सीखने की आदत को विकसित करें। जब युवा कौशल संपन्न होंगे तब वे स्वयं सफल होंगे और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। यही सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्माण भारत की दिशा में सबसे बड़ा योगदान होगा।
3: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
4: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
3: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

अभी आप सुन रहे थे युव मंच। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। आकाशवाणी शिमला से अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये राशि जारी की। उन्होंने कहा कि इस पहली किश्त का उद्देश्य राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाना है ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन करीब 10% की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि नई ड्रेनेज नीति के तहत सड़क निर्माण में आधुनिक जल निकासी व्यवस्था अपनाई जाएगी। इसके तहत बड़े कलवर्टों का निर्माण किया जाएगा ताकि बरसात के दौरान सड़कों को नुकसान ना हो। शिमला जिले के कुमारसेन में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार जनसेवा, सुशासन और समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में कुमारसेन क्षेत्र के लिए 8 संपर्क सड़कें स्वीकृत की गई हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि भगवान बुद्ध की करुणा, मध्यम मार्ग और अहिंसा की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे आज कांगड़ा जिले में बैजनाथ के ताशी जोंग में बोध ज्ञान परंपरा से जुड़े विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में जब पूरा विश्व हिंसा, युद्ध, पर्यावरणीय संकट और नैतिक मूल्यों के क्षरण जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी के अग्रणी संगठनों व विभागों से अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाने का आह्वान किया है। शिमला में आज कांग्रेस से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि संगठनों व विभागों के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर।
1: वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
5: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
4: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
6: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
7: PLI है ना?
8: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:07 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऋणियादि तान।